हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की असाढ़ माह की तिथि 1।

एफएमएक से 2.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले ही कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए आत्मसात करते हैं चिंतन के कुछ पलों का। कार्यक्रम है चिंतन।

0: मनुष्य समाज विभिन्न प्रकार के लोगों से बना है और सबके काम तथा ज्ञान के क्षेत्र समान नहीं होते, पर महत्ता सबकी है। समाज सभी किस्म के सभी प्रकार के कर्म करने वाले लोगों के तालमेल से बना है। कोई प्रशासन का दायित्व संभालता है, कोई शिक्षा संस्थानों में पढ़ाता है, तो कोई हल चलाता है। कर्म या श्रम के ये सब विविध रूप हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं और समाज के निर्माण में इन सब की समान जरूरत है। किसी एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चल सकता। हल जोतने वाले का भी समाज में उतना ही महत्व है जितना विद्वतापूर्ण भाषण देने वाले का। फिर जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं, उनका उत्तर हल चलाने वाला जो देगा, वही उत्तर एक प्रकांड विद्वान भी देगा। मनुष्य जन्म क्यों लेता है, मर क्यों जाता है, भूख प्यास और नींद क्यों लगती है, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर सभी लोगों के पास कमोबेश एक ही जैसे हैं। फिर कर्म के आधार पर, श्रम के आधार पर एक दूसरे के बीच भेदभाव क्यों है? जो ज्ञानी है, विद्वान है, वे क्यों हल चलाने वाले, भेड़ चराने वाले से अपने आप को अधिक श्रेष्ठ समझें? सब अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। एक कथा याद आती है। एक थे पंडित जी, बड़े भारी प्रकांड विद्वान, वेद पुराण शास्त्र ज्योतिष सबका मानो उनके कंठ में वास था। मगर एक बुराई थी उनमें, जितने बड़े विद्वान थे उतने ही अधिक अभिमानी थे, अपने ज्ञान पर फूले नहीं समाते थे। मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करना जितना कठिन होता है, उससे कहीं अधिक कठिन होता है ज्ञान के अहंकार पर अंकुश लगाना। ज्ञान को जिसने सहज भाव से पचा लिया, वह महापुरुष हो गया, युग युग के लिए अमर हो गया। मरकर भी जनता के हृदय में स्थायी निवास बना लिया उसने। ज्ञान प्राप्ति का पहला लक्ष्य होता है अहंकार की समाप्ति। अहंकार को वश में जो न रख सका, उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं। पंडित जी ने भी केवल ज्ञान ही प्राप्त किया था, अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे वे। एक दिन संयोगवश वे नाव से नदी पार कर रहे थे। उन्होंने नाविक से पूछा, तुमने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, यहां तो चप्पू चलाने से ही फुर्सत नहीं है। पंडित जी बड़े क्षुब्ध हुए। फिर एक एक करके साहित्य, दर्शन, कला सबके बारे में पूछा, मगर नाविक ने सबसे इनकार कर दिया, बल्कि साफ कह दिया कि वह तो साक्षर भी नहीं है। अब पंडित जी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने तैश में आकर कहा, तब तो तुम्हारा आधा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। इसी बीच अचानक तूफान आ गया, नाव हिचकोले खाने लगी और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। नाविक ने पंडित जी से पूछा, महाराज आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा, नहीं तैरना तो नहीं आता। नाविक ने तुरंत कहा, तब तो आज आपका पूरा जीवन ही बेकार हो गया, क्योंकि इसका अंत अब आ गया है। पंडित जी के वेद शास्त्र पुराण ज्योतिष का यहां कोई काम नहीं था। डूबने से बचने में एक ही विद्या काम कर सकती थी, तैरना। तात्पर्य यह कि कोई भी मनुष्य ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में पारंगत नहीं होता, इसलिए किसी के काम को हेय समझना नादानी है। यह अहंकार मनुष्य को खा जाता है। अपने ज्ञान पर कभी आवश्यकता से अधिक गर्व नहीं करना चाहिए और न ही दूसरे के अज्ञान पर हंसना चाहिए। हो सकता है जो ज्ञान उसके पास होगा वह हमारे पास नहीं हो। सबके काम का महत्व है और सबकी जरूरत समाज को है।
1: कर्म का महत्व। श्रोता भी सुन रहे थे आज का चिंतन एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए आनंद उठाते हैं कुछ भक्ति गीतों का। कार्यक्रम है वंदना।

प्रातः वंदना के इस अनुपम बेला में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये संसार वैसे ही है जैसा हम देखते हैं। इस संसार में हमें वही प्राप्त होता है जो हमारी दृष्टि में है। सब कुछ हमारी दृष्टि पर ही निर्भर है। हम जो प्राप्त किए हैं, जो प्राप्त होने वाला है, सब कुछ हमारी दृष्टि के कारण ही है, हमारे नजरिए के कारण ही है। और ये नजरिया आता है हमारे संस्कारों से।

श्रोताओं कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो हमारे संस्कारों से आती है और हमारे संस्कारों का निर्माता है जो चीज हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। तो जो चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं बाहर से, उस पर सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिन विचारों को हम ज्यादा ग्रहण करते हैं उसी रूप होते चले जाते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों को ग्रहण करते हैं तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं, और सकारात्मक विचारों का अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम सकारात्मक होते चले जाते हैं।

श्रोताओं कहते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख चीजों में, वस्तुओं में और जो हमें प्राप्त होता है उसमें बिल्कुल नहीं है। जीवन का वास्तविक सुख समझ में है। अगर समझ सकारात्मक हो तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती है, और जी समझ अगर नकारात्मक हुई तो जीवन में सिर्फ परेशानी ही है। अगर समझ दुरुस्त है तो लोग विपन्नता में भी आनंद ले लेते हैं, और समझ सही नहीं है तो संपन्नता में भी लोग निराश और परेशान रहते हैं।

श्रोताओं, जीवन में समझ का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। यहाँ लोग फकीरी में भी आनंद से जी लेते हैं और अमीरी में भी शिकायतों का टोकरा माथे पर लेकर फिरते रहते हैं। जीवन में सही महत्व सिर्फ सही समझ का है। श्रोताओं, भक्ति गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए।

0: श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 8।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है,

श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए अब जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। विविधा हिंदी वार्ता का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर, और 7:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गीत संगीत।

मॉर्निंग मेलोडी फिल्म संगीत का हमारा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज की तरह हेलो हजारीबाग।

इवनिंग मेलोडी ये कार्यक्रम होगा शाम 5:02 पर। खेती बारी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर।

श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना, और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:02 पर। शाम को प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत के कुछ अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। झनकार ये कार्यक्रम होगा 7:15 पर। ऑल टाइम हिट्स ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। और फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत, इसका आनंद आप उठा सकते हैं हर रोज की तरह आज भी रात्रि 8:00।

एक फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। और रात्रि 10 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा। और आज के सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण, श्रोता भी सुन रहे थे अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे हैं,
2: निर्बल ही ओ निर्धन ही ओ, निर्बल ही ओ निर्धन ही ओ बेटी गरीब के, निर्बल ही ओ निर्धन ही ओ बेटी गरीब के, तिलक दहेज मारो हो हम बदनसीब के। कहे मुरली बाबा इस

अपनी टीम के एफएम हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज आप सुन रहे हैं लाल बिहारी साव, सियाराम पासवान, उदय पासवान और साथियों को।

0: स्वतंत्र कुमार मिश्र के गाए इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग यही समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं के लिए पेश है हिंदी वार्ता का हमारा कार्यक्रम विविधा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संदीप कुमार सिन्हा की वार्ता हिंदी सिनेमा में प्रेमचंद का साहित्य।
1: कसौटियों पर जीवन कसा जाता है, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और कसौटी है, जिसे हम साहित्यिक कसौटी कहते हैं। साहित्यिक कसौटी पर जीवन की समीक्षा, उसका विश्लेषण और समाज में व्याप्त तमाम बारीकियों की पड़ताल की जा सकती है। और इन्हीं पड़तालों के सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर एक ऐसा साहित्यकार नजर आता है, जिसने समाज के अंदर द्वंद्वों, उसकी बुनावटों, बिखराव को पुख्तगी के साथ दर्ज किया और एक ऐसी पैनी दृष्टि दी जो आज भी प्रासंगिक है। वो कोई और नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद हैं, या ये कहें कि वही हो सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के प्रारंभिक जीवन से प्रारंभ करते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शिव नगरी वाराणसी के निकट लम्ही गांव

जन्मे अजायब राय एवं आनंदी देवी की संतान के रूप में हुई। दुर्भाग्य से 7-8 वर्ष की अवस्था में माता एवं 14-15 वर्ष की अवस्था में पिता का शाया सर से उठ गया। 15-16 वर्ष की अवस्था में हुआ प्रथम विवाह भी सफल नहीं हो पाया। इन सभी परिस्थितियों ने उनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में अनेक अड़चने अवश्य पैदा की, फिर भी शिक्षा प्राप्ति के प्रति उनकी लगन, कड़े परिश्रम तथा समर्पण ने सभी बाधाओं का डटकर सामना करते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 25 वर्ष की अवस्था में तत्कालीन समाज की मान्यताओं को पीछे छोड़ते हुए शिवरानी देवी एक विधवा परंतु विदुषी महिला के साथ पुनः परिणय सूत्र में बंध गए, जो आजीवन हर पग पर उनके साथ खड़ी रही। इन दोनों की 3 संतानें श्रीपत राय, कमला देवी और अमृत राय हुए। 1909-10 में ईस्वी में उनकी एक रचना सोजे वतन प्रकाशित हुई, जिसकी आम जनमानस में इतनी ख्याति हुई कि तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत भी थोड़े समय के लिए डगमगा गई। फलतः सोजे वतन की 500 प्रतियों को अग्नि की भेंट चढ़ाते हुए धनपत राय को जेल में बंद करने की हिदायत तक दे डाली गई। कलम के इस जादूगर को तब तक अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की लत सी लग गई थी। वह कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ कोई न कोई राह अवश्य ही निकल जाती है। अंग्रेजों की इस धमकी के पश्चात जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम, जो उनके मित्र भी थे, ने उनकी समस्या का समाधान धनपत राय को प्रेमचंद में परिणत करके निकाला। इस प्रकार धनपत राय से प्रेमचंद बनने की यात्रा तय हुई। अब आरंभ करते हैं मुंशी प्रेमचंद तथा उनकी रचनाओं के साथ सिनेमा जगत की यात्रा की, जिसका प्रथम पग स्वयं मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही उठाया गया था, जब 1933 ईस्वी में आर्थिक तंगी को दूर करने के विचार से मुंबई, तत्कालीन बंबई की ओर रुख किया और वहां फिल्म बनाने वाली कंपनी अजंता सिनेटोन में 8,000 रूपए सालाना पर बतौर लेखक जुड़ गए। उनकी पहली फिल्म 1934 में द मिल मजदूर इसी कंपनी के बैनर तले बनी तथा इसका निर्देशन मोहन भावनानी ने किया। इस फिल्म को इस प्रकार फिल्माया गया कि जीवंतता साफ झलकती रहे, क्योंकि फिल्म में मजदूरों की समस्या, उन पर होने वाले अत्याचार, भेदभाव, उनके अधिकारों का हनन इत्यादि का चित्रण किया गया था। जब यह बात मुंबई के उद्योगपतियों को मालूम पड़ा तो उन्हें लगा कहीं मजदूर फिल्म देखकर विद्रोह न कर दें, इसलिए उद्योगपतियों के समूह ने मिलकर फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया। कुछ समय बाद फिल्म को दिल्ली और लाहौर में रिलीज किया गया। अंततः जिसका डर था वही हुआ। फिल्म देखकर मजदूरों ने अपने मालिकों का विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, फलतः फिल्म को प्रतिबंधित घोषित किया गया। इससे प्रेमचंद अत्यंत आहत भी हुए, क्योंकि साहित्यकार में बाजारवाद का पुट लेस मात्र भी नहीं होता। वह तो अपने हृदय की गहराइयों से निकले उद्गार को शब्दों में पिरोता है, जिस कारण उसे अपने लेखन से एक अद्भुत भावनात्मक लगाव होता है। शायद इसी कारण अपनी दूसरी कृति लिखते समय मेकर्स द्वारा कहानी में अत्यंत फेरबदल अर्थात लेखक की मनोभाव में करवाए गए अवांछित हस्तक्षेप ने मुंशी जी का मुंबई से मुंह भंग कर दिया और उन्होंने अपने 2 महीने का वेतन छोड़ इलाहाबाद की ओर रुख किया। यद्यपि मुंशी जी का मुंबई से मुंह भंग हो गया हो, परंतु मुंबई फिल्म जगत उनकी रचनाओं से स्वयं को अलग न रख सका। मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के पश्चात उनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम से के सुब्रमण्यम ने 1938 में एक फिल्म बनाई। रंगभूमि पर भी इसी शीर्षक से 1941 ईस्वी में फिल्म बनाई गई। 1963 में इनके अत्यंत ही मार्मिक उपन्यास गोदान पर भी फिल्म बनाई गई, जिसका निर्देशन त्रिलोक जेटली द्वारा किया गया तथा इस फिल्म में बतौर अभिनेता राजकुमार, महमूद, मदनपुरी एवं अभिनेत्री के रूप में कामिनी कौशल, शशिकला, सुधा खोटे एवं टुनटुन ने कार्य किया। मुंशी जी के प्रसिद्ध उपन्यास गबन पर भी इसी नाम से कृष्ण चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में फिल्म बनाई गई, जिसके प्रमुख कलाकार सुनील दत्त, साधना, कन्हैयालाल, अनवर हुसैन, कमल कपूर, लीला मिश्रा इत्यादि रहे। मुंशी जी की कहानी त्रिया चरित्र पर अब्दुल रशीद कादर के निर्देशन में स्वामी नाम से फिल्म बनाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से

0: तारा देवी, जयराज तथा जीवन ने अभिनय किया। मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने भी प्रेमचंद की दो महत्वपूर्ण कहानियों, जिसमें प्रथम संजीव कुमार, अमजद खान, शहीद जाफरी, सबाना आजमी, फरीदा जलाल अभिनीत फिल्म शतरंज के खिलाड़ी थी। इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी फिल्म 1981 में सदगति रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्माण दूरदर्शन द्वारा किया गया तथा मुख्य पात्रों के रूप में ओमपुरी, स्मिता पाटिल, मोहन अगाशे ने अभिनय किया। इस फिल्म को भी नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल जूरी से सम्मानित किया गया। प्रेमचंद जी की एक प्रचलित कहानी कफन पर तेलुगु भाषा में 1977 ईस्वी में ओका उड़ी काथा नाम से फिल्म बनी, जिसका निर्देशन मृणाल सेन ने किया। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्मी सफर के साथ साथ टेलीविजन पर धारावाहिकों और टेलीफिल्म्स द्वारा भी उनकी रचना ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस कड़ी में सबसे प्रमुख नाम गुलजार साहब की तहरीर मुंशी प्रेमचंद दूरदर्शन पर प्रसारित की गई, जिसे अत्यंत ही जीवंतता के साथ फिल्माया गया। मुख्य रूप से उनकी प्रमुख कहानियां जैसे कफन, ठाकुर का कुआं, सवा शेर गेहूं, नमक का दारोगा, पुष की रात, निर्मला, ज्योति, ईदगाह, बूढ़ी काकी, हज ए अकबर हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय मेहरा के निर्देशन द्वारा उनकी प्रसिद्ध कृति सेवा सदन पर श्रृंखलाबद्ध धारावाहिक का निर्माण किया गया, जिसे दूरदर्शन पर ही प्रसारित किया गया। टेलीफिल्म्स भी उनकी कहानियों से स्वयं को अछूता नहीं रख पाया। इनकी प्रमुख कहानियां दूध का दाम, मुक्ति मार्ग, बड़े भाई साहब, कजाकी इत्यादि पर इनके रैना साहब ने टेलीफिल्म्स बनाई। दरअसल प्रेमचंद ने अपना लेखन सिनेमा माध्यम को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था। उनका लेखन सतह से देखने पर सरल लगता हो, लेकिन वह अपने समय के बहुत ही जटिल और अंतर विरोधों से भरे सामाजिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पात्र भी बहुत जटिल किस्म के हैं और इनमें इतने स्तर हैं कि उनमें से किसी की भी उपेक्षा चरित्र को कमजोर बना सकती है। किसी भी फिल्मकार के लिए प्रेमचंद की रचनाओं को सिनेमा के लिए रूपांतरित करना बहुत बड़ी चुनौती रहा है। प्रेमचंद जैसे प्रतिभा वाले लेखक के लिए वैसा ही प्रतिभाशाली फिल्मकार होना भी जरूरी है। शायद यही वजह है कि उनकी क्लासिक रचनाओं के उत्कृष्ट और चुनौतीपूर्ण रूपांतरण भी उन्हीं फिल्मकारों द्वारा संभव हुए हैं जिन्होंने इस काम को रचनात्मक चुनौती के रूप में ग्रहण किया था। आज भी फिल्मकारों के लिए प्रेमचंद वैसी ही रचनात्मक चुनौती बनकर उपस्थित हैं। धन्यवाद।
1: प्रेमचंद का से हिंदी सिनेमा और प्रेमचंद का साहित्य अभी आप सुन रहे थे संदीप कुमार सिन्हा की वार्ता। इसी के साथ ही विविधा का हमारा आज का ये अंक यही समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है गैर हिंदी फिल्मों के गीतों का हमारा कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आपको बता दें कि आपने ट्यून किया FM हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत संगीत। आज आप सुन रहे हैं आशा भोसले, जगजीत सिंह और साथियों को।

0: श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत से गजल के साथ ही गीत संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। इसके तुरंत बाद 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
5: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ में 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
6: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
7: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
8: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
9: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
10: मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says strong maritime capability is deciding factor for a country's economic and strategic influence and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. U.S. Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
12: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता यस्टरडे। Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
12: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
3: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personals and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the cheetahs project. Officials informed her that India currently has 52 cheetahs, of which 49 are in the Kuno National Park, while 3 have been shifted to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also briefed about the monitoring and tracking system used for the animals. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious cheetah reintroduction project in 2022 by releasing 8 cheetahs into Kuno National Park on his birthday. Subsequently, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
12: India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
13: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS Joint Working Groups on Counter-Terrorism and on Security in the Use of Information and Communication Technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
12: The National Testing Agency or NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. We have a report.
14: The national level eligibility test will be conducted in computer-based test CBT mode until 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship JRF, assistant professor positions and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify all examination details. It said that candidates must check their examination date, shift, timing and allotted examination center before the exam day. Moreover, persons with disabilities or persons with benchmark disabilities candidates have been advised to visit their allotted centers in advance to familiarize themselves with the location and facilities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
12: The NTA has refuted claims of a video circulating on social media that the NEET UG 2026 re-examination question paper was leaked on Telegram before the examination. In a social media post, NTA said that the examination was conducted successfully under comprehensive security and surveillance. It further said that manufacturing and deliberately circulating such misinformation to defraud or alarm students is a serious offence. NTA said that it is taking action against those responsible for originating this content with the support of Indian Cybercrime Coordination Centre and law enforcement agencies. The Central Board of Secondary Education or CBSE has commenced the release of Class 12 verification of issues observed and re-evaluation outcomes. The status of applications can be checked at results.digilocker.gov.in. A report.
15: The CBSE said in a statement that the outcomes are being released in a phased manner with over 80% of the total applications received was declared yesterday. The outcomes of the remaining applications will be made available in phases and the entire process is expected to be completed soon. CBSE has assured students that every application has been processed through a robust, transparent and carefully monitored system to ensure fairness and accuracy. Students have been advised not to believe rumors or unverified social media posts and to rely only on official CBSE communications for authentic information. With Suparna's report, Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
12: In West Bengal, anticipation is high as the BJP government prepares to present its first full-fledged budget today in the assembly. For Chief Minister Shubhendu Adhikari, this marks the first major test of promises made during the election campaign. With the centre pledging massive financial support and the advantage of a double-engine government, expectations among citizens are soaring. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the second civil investiture ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 15 special programs as part of our series, People's Padma on Akashvani.
16: I've been working for the last 25 years on traditional Siddha-based ethno-veterinary medicine to counteract some of the issues affecting the livestock production in India.
17: But as a country, we need microprocessors that should be indigenously developed.
18: Award is an acknowledgement to the great teamwork from DRDO and industries, inspection agencies.
12: In these episodes, listeners will get an insight into the work and life of Padma Awardees. These programs will be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashvani Gold. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashvani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The 19th Mumbai International Film Festival, or MIFF 2026, concluded last evening. Addressing the closing ceremony held in Mumbai, Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma hailed MIFF as one of the most prestigious festivals in the world for non-fiction cinema. Polish documentary Silver backed the prestigious Golden Conch for Best Documentary in the international competition section. More from our correspondent.
19: The best films across various categories were honored with 18 awards by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Mr. Prabhat, and others. In the international competition section, Maya's Song won the Silver Conch for Best Animation Film and Under the Snow received the Silver Conch for Best Short Fiction Film. In the national competition category, the Silver Conch for Best Animation Film was awarded to Armstrong from Angalamman Kovil Street. The Silver Conch for Best Short Fiction Film went to Small Clouds, while Y won the Silver Conch for Best Documentary Film. The Old Bull Nose, or Once New, won the award for Best Student Film, while The Last Shelter received the award for Best Short Film on Vikasit Bharat, 150 Years of Vande Mataram, Bharat at 2026. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
12: U.S. Vice President J.D. Vance has said that talks with Iran were making progress as senior delegations met in Switzerland to address Tehran's nuclear program and regional security issues. Vance also expressed optimism that negotiators could advance discussions further. We have more details in this report.
20: Delegations from the U.S. and Iran began closed-door talks at the Bergenstock Resort overlooking the Lake Lucerne. Speaking to the reporters before the meeting, J.D. Vance said negotiations have already yielded encouraging results. The talks are focused primarily on Iran's nuclear program through regional security issues, including the efforts to maintain ceasefire between Israel and Lebanon, are also expected to feature prominently.
21: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen?
20: When asked about the situation in Lebanon and Israel's military operations there, J.D. Vance said recent diplomatic efforts had produced positive results while acknowledging that differences remained over how best to achieve long-term stability. He further defended Washington's role in seeking to end the conflict, saying the United States had played a leading role in efforts to reduce tensions and support peace initiatives in recent months. Meanwhile, the outcome of the talks is being closely watched by regional and international stakeholders amid efforts to revive diplomacy with Tehran and prevent a wider conflict in West Asia. With Mayur's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
12: On to sports now. In men's hockey, India defeated Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
22: Thank you, Saira. Papers have widely noticed the observance of the International Day of Yoga, along with fresh developments in the US-Iran talks. The Statesman writes, PM leads International Yoga Day celebrations, says yoga has unique power to unite nations. The Hindu carries a beautiful picture of army personnel taking part in a yoga session in Ladakh with the picturesque Himalayas in the background. NEET re-exam, government passes litmus test, writes the Pioneer. India-US to hold trade talks this week to finalize interim pact, reports the Statesman. The Hindu in its editorial Just Shoots writes, DNA tests for paternity allowed as a last resort must not violate other rights. And finally, the Indian Express writes, IIT Bombay finds a new way to lower LDL cholesterol, adding researchers stop bad fat from reaching liver cells that release it into the blood. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says strong maritime capability is deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण। भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेस्ट्रा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्यभर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित तीन नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
2: सरकार पूरी कटिबद्ध थी, बच्चों के साथ ये वादा किया था कि ये जो री एग्जाम हो रहा है उसको पूरी सुरक्षा से, पूरी ईमानदारी से, बच्चों के सुविधाओं को देखते हुए कंडक्ट कराएगी। कम समय पे कराने के बावजूद किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी थी, तो एनटीए ने सरकार के सभी अंगों के साथ मिलकर इस एग्जाम को कराया है, जिसमें हमें सभी विभागों का योगदान मिला, सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज का, जिसकी वजह से बिल्कुल टीम भारत, टीम एनटीए के समर्थन में आ गई, जिससे हम ये परीक्षा सुचारू रूप से कंडक्ट कराने में सफल हो पाए।
0: राजधानी रांची समेत राज्यभर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एनटीए और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू थी। राजधानी रांची में परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाने का प्रयास किया गया तो उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। बीआईटी मेश्रा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध, शैक्षणिक सहयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाएं, छात्र एवं फैकल्टी विनिमय, इंटर्नशिप और फैकल्टी विकास कार्यक्रम संचालित करेंगे। बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने इसे अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार आधारित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि यह साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, जल संसाधन, जलवायु और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को नई दिशा देगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवण प्रभाकर ने बताया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज धनबाद में जनाक्रोश मार्च निकाला जाएगा।
5: झारखंड की जनता का दमन हो रहा है, विस्थापितों का दमन हो रहा है, रैयतों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है। कोयला माफिया है, उनको जेल में डालने की बजाय आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर जनाक्रोश मार्च परेड गोल ग्राउंड से, धनबाद के गोल ग्राउंड से आरंभ होगा और कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जाकर यह समाप्त होगा।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 4 मिलीमीटर और खूंटी में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ सहित अन्य जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय हॉकी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पुरुष और महिला दोनों टीमों ने विदेशी धरती पर शानदार जीत दर्ज की। ऑकलैंड में महिला टीम ने FIH नेशंस कप 2025-26 फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता और प्रो लीग 2026-27 में जगह पक्की की। वहीं नीदरलैंड में पुरुष टीम ने प्रो लीग मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड को 3-2 से हराकर उलटफेर किया। भारत के लिए जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र ने गोल दागे। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की प्रथम वार्षिक आम सभा IPS डॉक्टर सरोजनी लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के लगभग 55 पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल प्रशासक और पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान श्रीमती लकड़ा ने खिलाड़ियों को जागरूक करने पर जोर दिया।
6: जो भी एक्स प्लेयर्स हैं उनका हेल्थ बने रहे, उसके लिए कई तरह से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम बना सकते, ज्यादा से ज्यादा संख्या एक्स प्लेयर्स जो है भाग लेंगे और ये एक तरह से उनका अच्छे हेल्थ के लिए भी वो अवेयरनेस बना सकते।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने नीट परीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, नीट यूजी में बैठे 20 लाख छात्र, बिहार में 9 फर्जी परीक्षार्थी धराए। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान ने योगा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मांडर के डोभा में 2 बच्चों की डूबने से मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण, भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेसरा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्य भर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।
1: तार सप्तक, मंद्र सप्तक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
2: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ,
3: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
2: अरे यार
3: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म थी

श्रोताओं ईश्वर। अब मॉर्निंग मेलोडी में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म दलाल से। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत सी आवाज में आई सुनते हैं ये गीत।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत सी आवाज में आप सुन रहे थे दलाल फिल्म का गीत। इसी के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी का आज का खूबसूरत सा ये सफर यही समाप्त होता है। सूरज को दीजिए अनुमति, नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चचलोक में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं देव नेगी और पायल देव की आवाजों में वायु का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कहूँ ना प्यार है इस फिल्म का गीत, लकी अली रम्या की आवाजों में, इब्राहिम अश्क की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

ये गीत था जानम समझा करो। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में मजरूह के बोल थे। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

0: चाहिए बैसाखी, आई बैसाखी।
1: सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। मस्ताना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर यह नगमा फिल्माया गया था।

1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

0: कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।
1: हम हैं इस पल।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना, अल्देना, सिर्फ एक तू है।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश से प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।

श्रोताओं, इस संसार में हर जीव सुख चाहता है। सुखी होने के लिए जरूरी है कि तन से, जी हाँ, तन से और मन से दोनों से स्वस्थ होना जरूरी है। और दोनों से स्वस्थ होने के लिए जरूरी है कि हम जीवन को सदमार्ग पर लगाएं, सच्चे मार्ग पर लगाएं, सही मार्ग पर लगाएं, सभी तरह के नशे व विकारों से खुद को अलग रखें। स्वागत है आप सभी का हेलो हजारीबाग में। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। श्रोताओं, नशा और नुकसान में बहुत दूरी नहीं होती है। नशा करने वाले व्यक्ति का जीवन निरंतर नुकसान की ओर बढ़ता जाता है। किस तरह के नुकसान होते हैं, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और वो तमाम अंक, वो जरूरी बातें अखबार के पन्ने, इतिहास के पन्नों

डालेंगे निगाह, खूबसूरत गीतों की होगी सौगात, ढेर सारे जानकारियां, ढेर सारी जानकारियों के साथ आज के इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले इस खूबसूरत से गीत का हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं।

श्रोताओं, नशे से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, इससे शरीर, मन और मस्तिष्क कमजोर होता जाता है। मनुष्य में निर्णय करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और कई तरह के अवसाद और बीमारियां पैदा होती है। कुछ की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे नशा करने वाले व्यक्ति के अंगों का भी नुकसान होता है, शरीर के जो अंग है उसको नुकसान होता है। जैसे फेफड़ा, लीवर और किडनी कहते हैं, इससे प्रभावित होता है और मस्तिष्क का विकास बाधित हो जाता है। खास करके किशोर अवस्था में नशीले पदार्थ के सेवन से मस्तिष्क की कई तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य कई तरह के अवसाद में धीरे धीरे चला जाता है। मानसिक बीमारियां इसी के कारण उपजती हैं और खास करके हम चर्चा करें तो जैसे युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी की समस्या बनी रहती है या दस्त में कमी जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उसके जो जीवन का जो लक्ष्य है, शिक्षा, करियर, सब पर इस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आता है। लक्ष्य से युवा भटक जाते हैं। नशे में डूबे युवा अपनी पढ़ाई और करियर को पूरी तरह से नुकसान होता है, उससे ध्यान उनका भटक जाता है। नशे के कारण छात्रों के स्कूल छोड़ने का दर, ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ जाती है और इससे शैक्षणिक योग्यता खराब होती है। सामाजिक और पारिवारिक दुष्प्रभाव होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है आर्थिक तंगी, और नशे में ज़्यादा पैसा लग जाने से घर की स्थिति, परिवार की स्थिति, जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि युवा जो हैं या बच्चे जो हैं वो अपने घर से पैसे चुराने लगते हैं, जिससे पूरा परिवार कर्ज और आर्थिक संकट में आ जाता है। कई बार तो अपराध की ओर भी मुड़ जाते हैं। नशे के खर्च को पूरा करने या नशे की हालत में युवा अक्सर चोरी या हिंसा जैसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। अत्यधिक हताशा और नशे के प्रभाव कारण युवाओं में सुसाइडल टेंडेंसी भी ज़्यादा देखी जाती है। और तो इस तरह से एक ये सारी समस्याएं हैं और हम अक्सर समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन इसके समाधान पर अगर ध्यान फोकस हो तो समस्याएं धीरे धीरे छूटी होती चली जाती है। तो अगर किसी तरह का कोई अगर नशे के गिरफ्त में हैं, शिकार हैं और कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो एक नशा मुक्ति केंद्र का भी खूब अभी देख रहे हैं कि इसका प्रयास हो रहा है और इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। तो अपने आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर, और जिला के जो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अस्पताल है, वहां पर नशा मुक्ति केंद्र स्थापित है, तो वहां से संपर्क हमें जरूर रखना चाहिए। और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कहां किस तरह से इसका इलाज समुचित तरीके से होता है इसकी भी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। तो नशे को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है हम सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस प्रोग्राम में, थोड़ा मौसम का हाल देख लेते हैं। तो आज दिन में अधिकतम तापमान कहें 35 डिग्री रहने की संभावना है, न्यूनतम 23.5 डिग्री की संभावना व्यक्त की गई है। और कल रात हजारीबाग और आसपास के इलाके में थोड़ी बारिश हुई है, और तो आज भी बादल छाने, कोहरा और कुहासा होने की संभावना है और तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। और शहर में आज का जिक्र कर लेते हैं।

कई तरह की गतिविधियां हैं और सबसे बड़ी जो गतिविधि है जो योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम जो कल आयोजित किए गए थे, आज भी कई संस्थानों में योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हैं, तो ये गतिविधियां देखी जा रही है। इसके अलावे अगर कहें तो धार्मिक आध्यात्मिक जो आयोजन है वो हो रहे हैं, विभिन्न कई जगह यज्ञ होने की भी सूचना है और बड़ा बाजार जैन मंदिर में भी सुबह मुनिश्री के प्रवचन का कार्यक्रम है। तो इस तरह की दैनिक गतिविधियां कई तरह की हैं, तो आगे चर्चा करेंगे कुछ एक जो खबरों में और कौन कौन सी बातें ऐसे प्रमुखता से छपी है। तो दो चीजें तो सबसे प्रमुखता से छपी है, खबरों की ओर जाने से पहले हम आपको ये बात साझा कर दें कि सबसे ज्यादा योग पर खूबसूरत तस्वीरों के साथ अखबारों ने खबर प्रकाशित की है और हर पन्ना किसी न किसी रूप से योगमय है, तो ये एक बड़ी बात है, खूबसूरत बात है, अच्छी बात है। योग का हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ये हमारा अभिन्न हिस्सा बने, ये जरूरी है। और दूसरी खबर जो है वो रीनीट परीक्षा को लेकर के है, तो दोनों खबरें अखबारों के प्रथम पृष्ठ से लेकर लगभग सभी पृष्ठ में कुछ न कुछ खबरें इनके प्रकाशित हुए। तो आगे जानेंगे कि अखबारों में किस तरह से कौन सी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाते हैं।

तो हेलो हजारीबाग में अखबार की कुछ खबरें हम आपके साथ साझा कर दें। और ये दैनिक भास्कर का हजारीबाग पन्ना है और प्रथम पृष्ठ में बैनर जो खबर लगी हुई वो हम आपको बता दें। वो बड़ी सी तस्वीर के साथ ये खबर अखबार ने प्रकाशित की है, योग से जुड़ी हुई है। स्वस्थ जीवन का एक ही संकल्प, नियमित करें योग और रहे निरोग। अखबार लिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कैनरी पहाड़, गांधी मैदान, झील परिसर सहित शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भव्य योग्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग अपने अपने नजदीकी मैदानों, सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित हुए। उन्होंने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। कार्यक्रमों में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग शिविरों में शामिल होकर योगाभ्यास किया और इन्होंने लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। योगाभ्यास करते हुए सिविल सर्जन, नगर निगम के लोग भी शामिल थे। तो ये इसी से जुड़ी हुई खबरें बहुत ही प्रमुखता से अखबारों ने प्रकाशित किया है। और कहीं खंभे गड़े हैं, कहीं पंखा भी लगा दिए गए, लेकिन बिजली गायब है, हो रही है परेशानी। शिक्षा व बिजली विभाग में समन्वय की कमी, 17 स्कूलों में बिजली नहीं। ये दैनिक भास्कर की खबर है और ये स्कूल की तस्वीर के साथ ये खबर अखबार ने प्रकाशित की। एक और खबर जो ध्यान खींचती है वो नगर आयुक्त ने 109 वार्ड का लिया जिम्मा, उपनगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त को सौंपी जिम्मेदारी। नगर की सफाई व्यवस्था होगी दुरुस्त, 3 टीमें करेंगी निगरानी। अब इसकी इस खबर को थोड़ा हम आपके साथ और साझा करें। अखबार लिखता है कि शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर आयुक्त ने 1-2 नहीं 3-3 मॉनिटरिंग टीम गठित की है। वह स्वयं भी 1 से 9 वार्ड की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही उप नगर आयुक्त और दोनों सहायक नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदाधिकारियों के अलावा वार्ड समिति व वार्ड पार्षद को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम शहर की मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराती है। शहर की सफाई व्यवस्था इसका प्रमुख कार्य है। पेयजल, सड़क और स्ट्रीट लाइट की जिम्मेदारी भी नगर निगम के पास है। शहर में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी कुछ बातें अखबार ने प्रकाशित की है, जैसे जो शीर्षक है वो हम आपके साथ बता दें। सर्विस देने वाली कंपनी को चेतावनी दी गई, नगर आयुक्त सचिव को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, समिति का अध्यक्ष वार्ड पार्षद को बनाया गया। तो ये थी कुछ खबरें और कुछ जानकारियां। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत हम आप सभी को सुनवाते हैं।

श्रोताओं, प्रभात खबर का देश विदेश जो पन्ना है उसमें से कुछ खबरें ध्यान खींचती हैं। जैसे एक नई ताकत, स्वदेश निर्मित पोत, नौसेना में शामिल, शांति का मार्ग समर्थ से ही सुनिश्चित, मोदी। इस शीर्षक से अखबार ने खबर प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर रविवार को भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पोतों को कमीशन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का मार्ग सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और मजबूत समुद्री क्षमता के बिना कोई राष्ट्र प्रमुख शक्ति नहीं बन सकता है। तीनों पोतों का डिजाइन नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने किया है। और इसके शामिल होने से भारत की समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। और इनमें स्टील फ्रिगेट, सर्वेक्षण पोत, पनडुब्बीरोधी जहाज शामिल है। इन परियोजनाओं में 200 से अधिक MSME की भागीदारी रही। और इसके अलावा तस्वीरें, अलग अलग छोटी छोटी तस्वीरों के साथ और इससे जुड़ी हुई जानकारियां भी अखबार ने प्रकाशित की है। और इसी में इसी पन्ने पर अखबार की एक और खबर है, फोन पर अंगूठा लगाते ही खुलेगा अपराधियों का कच्चा चिट्ठा। इस बैनर हेडलाइन के साथ ये कहें कि खबर प्रकाशित है। अखबार लिखता है कि देश में अपराध नियंत्रण और जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा विकसित यह ऐप पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर ही किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने में मदद करेगा। इससे जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। अभिज्ञान ऐप स्मार्टफोन और पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए काम करेगा। पुलिस गश्त, नाकेबंदी एवं जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति का अंगूठा स्कैन करेगी और ऐप सीधे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के केंद्रीय डेटाबेस में उसका मिलान करेगा। डेमो के अनुसार महज 35 सेकंड में पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। और भी बातें अखबार ने प्रकाशित की है, तो कुछ और खबरें लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, 22 जून 1932 ईस्वी को एक हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक महान कलाकार का जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी का। नवांशहर पंजाब में जन्मे थे, और जब अमरीश पुरी की बात होती है तो किरदार और जो खुद अभिनेता, दोनों के बीच की पहचान मिट जाती है। एक दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले अमरीश पुरी के हिस्से कई बेहतरीन फिल्में आई हैं, और एक एक करके अगर उसका नाम भी बताना शुरू करें तो इसकी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ एक फिल्में जो उनकी लोकप्रिय रही हैं उसकी चर्चा थोड़ी कर ले। परदेश आपने देखी होगी, 1997 ईस्वी में फिल्म आई थी। फूल और कांटे 1991 ईस्वी की फिल्म थी। उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने समय की

ही लोकप्रिय फिल्म घातक का जिक्र कर लेते हैं। 1996 ईस्वी में ये फिल्म आई थी। बादल, मुझे कुछ कहना है, मुझसे शादी करोगी, हलचल जैसी कई फिल्में ये इनकी आई है, और बहुत ही राम लखन, मिस्टर इंडिया जैसी कई फिल्में हैं जिसमें इनका अभिनय बहुत ही दमदार तरीके से दिखाई देता है।

श्रोताओं, अखबार के पन्नों के बाद थोड़ी चर्चा करते हैं। अखबार कुछ और खबरें जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इतिहास के पन्नों की ओर निगाह डालते हैं। और आज के दिन के साथ, आज के तारीख के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटनाक्रम जुड़ी हुई है, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। 1939 ईस्वी की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और बहुत ही महती भूमिका थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपना वारिस आज ही के दिन में घोषित किया था और ये वारिस घोषित करने की तारीख है आज ही के दिन 22 जून 1555। 1897 ईस्वी का जिक्र कर लेते हैं। पुणे में चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी और ये 1897 ईस्वी की घटना है। और 22 जून की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑपरेशन बरब्रोसा के तहत हिटलर की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर बड़ा आक्रमण कर दिया था। महान वैज्ञानिक गैलीलियो से जुड़ी हुई बातें भी आज की तारीख से जुड़ी हुई है। गैलीलियो को कैथोलिक चर्च द्वारा सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले अपने सिद्धांत को त्यागने के लिए मजबूर किया गया था आज ही के दिन 1633 ईस्वी में। और मेक्सिको में हुई फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल, बात 1986 ईस्वी की है, इस फाइनल मैच में, क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने प्रसिद्ध हेड ऑफ गॉड गोल किया था। और स्वीडन ने अपना राष्ट्रीय ध्वज आधिकारिक तौर पर आज ही के दिन 1906 ईस्वी को अपनाया था। और 1990 की बात कर लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान बर्लिन में बने चेक प्वाइंट चार्ली को हटाने का कार्य शुरू हुआ था, जो इस बात का संकेत है कि शीत युद्ध समाप्त हो रहा है। तो ये थी इतिहास के साथ जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। और ये कुछ खबरों का भी जिक्र कर लेते हैं। दैनिक हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ पर ये माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तस्वीरों के साथ योग करते हुए एक बहुत ही सुंदर खबर प्रकाशित की है। शीर्षक है, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए योग जरूरी। और दूसरी खबर है, ये पुनर्परीक्षा के लिए केंद्र राज्यों का सिस्टम रहा एकजुट, राहत बिना बाधा संपन्न हुई नेट। थोड़ी चर्चा इस अखबार ने क्या लिखा है उसकी कर लेते हैं। अखबार लिखता है कि नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को देश भर के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 13 भाषाओं में आयोजित इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। एनटीए ने परीक्षा संपन्न होने के बाद कहा कि यह टीम भारत की सामूहिक शक्ति का उदाहरण था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थान और हजारों शिक्षाविदों ने मिलकर परीक्षा को सुरक्षित और सुचारू बनाया। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 3 मई को हुई परीक्षा रद्द किए जाने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को फिर से नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया। और इसके अलावा हजारीबाग से भी जुड़ी हुई इसी अखबार ने खबर प्रकाशित की है। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग में ली गई नीट यूजी की परीक्षा। अखबार लिखता है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा में कुल 3,212 अभ्यर्थी नामांकित थे, जिसमें 2,939 परीक्षार्थी शामिल हुए जबकि 273 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। निर्धारित समय से पहले ही परीक्षार्थी अपने अपने केंद्रों पर पहुंच गए।

प्रवेश के दौरान संघन जांच की गई और एनटीए के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। और इसके अलावा और भी खबरें प्रकाशित की है। रामगढ़ में 3 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न। तो ये नीट परीक्षा से जुड़ी हुई खबरें भी आज के अखबारों में बहुत ही प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंदर के पृष्ठों में भी प्रकाशित हुई है।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

और कुछ एक खबरें और हम ले लें। ये दैनिक जागरण का प्रथम पृष्ठ है और इसमें भी जो मुख्य खबर है वो योग से ही जुड़ी हुई है और ये बैनर हेडलाइन है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। और इसके अलावे और जो खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं, उसका जिक्र कर लें। और जैसे डॉक्टर बनने का सपना लिए 20 लाख छात्र नीट यूजी में बैठे, और जो वैश्विक खबर है जो प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका ईरान शांति वार्ता शुरू, ट्रंप ने ईरान को धमकाया। पश्चिम एशिया के 3.5 महीने तक चले घमासान और लेबनान में अब भी जारी इजरायली हमलों से उभरी तमाम आशंकाओं के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्जन टास्क में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई। वार्ता में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहे हैं। पिछले बुधवार को 14 बिंदु वाले प्रारंभिक समझौता मसौदे पर बनी सहमति के आधार पर अगले 60 दिनों तक तकनीकी पहलुओं पर वार्ता होगी। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि तेहरान लेबनान में हिजबुल्ला को रोके, वरना अमेरिका पूर्व की भांति ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। इसके अलावा दूसरी छोटी छोटी बातें अखबार ने बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रकाशित किए हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें अखबारों से।

श्रोताओं, नशा जीवन को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन नशे से मुक्ति संभव है। इस संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम से सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
2: रंग तरंग
1: आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की। पद्मश्री पद्मजा पिनानी जोगेलकर की आवाज में संदीप गुप्ते के द्वारा लिखी गई और महेश खानोलकर के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सम्मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत, उस गजल को। आइए चलते हैं अगली गजल की ओर, जिसे गाया है इंद्राणी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं बेनी सतामकर।

ಮದ ಸರೆ ಗ ಮದ ಪ ಮದ ಸರೆ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸನೆ ದ ಮ ಗ ಮದ ಮಗ ರೇ ನಿರ್ಗರ್ ನಿಧ ನಿ ಮದ.

0: हम सुन रहे थे नगमा जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
1: अहमद फराज की एक ताजा गजल पेश खिदमत है। ये गजल आपको जरा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल

0: रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेर ने इसे संगीत

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

हम सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। रंग

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिरसिक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: मनमाने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा। मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत और उस इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियां जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1, 2, 3, 4 कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि ना जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं, आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे कौर श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए, और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था। अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे, जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात

0: हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज़ नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरियाँ तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की यहूदी, उसमें काफ़ी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिख कर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गज़ल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गज़ल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती।
1: की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
2: समाज से तुमने के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
3: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
4: यह विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण करेंगे। इसे लेकर झारखंड में खुशी की लहर है। दिवंगत शिबू सोरेन की पोती जयश्री सोरेन ने इसे गर्व का क्षण बताया।
5: स्वर्गीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए ये एक भावुक कर देने वाला पल भी है और एक गर्व का क्षण भी है, क्योंकि भारत सरकार ने उनके दशकों के योगदान को, संघर्ष को और उनका झारखंड वासियों के प्रति जो समर्पण था उसको नवाजा और एक सम्मान दिया।
4: केंद्र प्रायोजित पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई उद्योगों को की जरूरत के अनुरूप विकसित करने की मंजूरी मिली है और इनके अपग्रेडेशन पर 5 साल में कुल 1,687 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एक उन्नत आईटीआई को हब बनाकर उसके साथ 4 स्पोक आईटीआई जोड़े जाएंगे, जहां इंडस्ट्री आधारित नए ट्रेड शुरू होंगे और छात्रों को प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप तथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रांची में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का सफल समापन हुआ, जिसमें 100 टन से अधिक आमों की बिक्री हुई। इस महोत्सव के दौरान करीब 60 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की गई और राज्य के जनजातीय किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ। नाबार्ड ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, बाजार से जोड़ने और जनजातीय आजीविका को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के छिपादोहर, बरवाडीह, महुआमलान रेलखंड में कमीशनिंग कार्य के लिए कल से 27 जून 2026 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आयुष्मान भारत योजना की खूबियां बताई। श्री सेठ ने कहा कि इस योजना से 9 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
6: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देशवासी जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, खेत खलियान बिक जाता था, बेटा बेटी को पढ़ाई छूट जाता था, आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड, देश भर के करोड़ों लोग आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लगभग 9 करोड़ से ऊपर लोग अब तक देश भर में आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं।
4: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हो गई। यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से देश भर के साथ ही रांची में 6 परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में 30 जून तक होने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा दिवस से पहले अपनी परीक्षा तिथि, पाली, समय और अपने परीक्षा केंद्र की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा PWD या PWBD अभ्यर्थियों को अपने आवंटित केंद्रों का पहले से दौरा करने की सलाह दी गई है ताकि वे स्थान और उपलब्ध सुविधाओं से परिचित हो सकें। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
4: राज्य में कल बारिश के दौरान वज्रपात से CPI नेता और एक महिला वार्ड सदस्य समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 किशोरों सहित दर्जन भर से अधिक लोग झुलस गए। इसके साथ ही देवघर, बरहेट और चित्तरपुर में भी वज्रपात से मौतें हुई। संताल कोयलांचल में 4, खूंटी में 2 और रामगढ़ में 2 लोगों की जान गई। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 461 अंक बढ़कर 77,264 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,153 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG और फार्मा सेक्टर में बढ़त देखी गई। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में चल रही पांचवीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास पहले, पश्चिमी सिंहभूम के तनिष्क कुमार दूसरे और रांची के यश रंजन तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिव सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे सम्मान। पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई को उद्योगों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा विकसित। 1,687 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची में नाबार्ड के आम महोत्सव में 100 टन से अधिक आम की हुई बिक्री। जनजातीय किसानों और किसान संगठनों को मिला बड़ा बाजार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा आज से शुरू। रांची के 6 परीक्षा केंद्रों पर भी 30 जून तक 2 पालियों में चलेगी परीक्षा। निषेधाज्ञा लागू। और राजधानी रांची में चल रही पांचवीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का हुआ समापन। पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास बने चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियां कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है। समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए ओंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं। उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस, प्रेयसी, पति, पत्नी, महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगली नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

0: एक बहुत सुंदर सा गीत हम अभी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियां हम तक पहुंचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से जिंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अजीज की गजल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ, वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफर, हाथ में गरम चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियां बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियां हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियां हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँ आरा का तलत जी का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा, रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम, और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मधोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियां आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारमा गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर वीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत सहरयार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उल्लुओं की कमी नहीं शाक पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे, दोस्तों के अनुरोध पर, तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसरे जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं। और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई जबरदस्त सी, बड़ी जोरदार सी, कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही, इस पर लिखते हैं, समय दिल शायराना होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारे। शेर हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है, बिल्कुल सही। बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें पहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में, बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं। कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने है, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आँखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो, प्रवीर हो जाए जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली, जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर भी तोड़ दूँ, तेरी गली ना छोड़ूं दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है, मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं, और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, बस करो अब ये युद्ध बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं।

है, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरीला सफर आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप सबका जीवन मंगलमय, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए नमस्कार।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मना।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिरदर्द या दूसरी तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: छाने की दवा, चक्रम की दवा,
2: धड़कन की दवा, धड़कन की दवा, तड़पन की दवा, और पेट में बंद पवन की दवा,
1: झटके की दवा, झटके की दवा, भटके की दवा, रास्ते के बीच झटके की दवा,
2: चक्कर की दवा, चक्कर की दवा, शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
1: ओम मार बना रगड़ा,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: ओम मार बना रगड़ा,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन,
3: हाय मेरा पेट बगड़ा,
4: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: आयुर्वेद के पंडा,
1: आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा। हे बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
0: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंदा, और आसमान पर उड़े हमारे मतलब ध्वज का झंडा।
1: हे धरती माता,
0: हाँ, हाँ, धरती माता।

0: आपको फांसी।
1: ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।
0: अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैठा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी। हो बोलो।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
4: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
3: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाल।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास के बोलो सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोलो शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हजरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे कि जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण होने जा रहा है। अलग राज्य के निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री देशम गुरु शिबू सोरेन को कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेंगी। देशम गुरु के सुपुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। यह प्रतिष्ठित सम्मान शिबू सोरेन को लोक कल्याण और आजीवन आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता और आस्था से जुड़े पवित्र धार्मिक स्थल जाहेर थान जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जाहेर थान, देशावली और माझी थान जैसे पवित्र जगहों पर जाकर शीश नवाना एक ऐतिहासिक पल है।

0: चंपई सोरेन ने इसे पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सम्मान बताया है।
1: आज बड़ा गौरव आदिवासी लोग समझ रहे हैं, मुझे बहुत गौरव भी लग रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहाड़पुर गांव में जाहिर थान में जाहिर गाड़ में डोबो जोहार किया, प्रणाम किया। हमारा आस्था हमारा अस्मिता जो जुड़ा हुआ है, ये आज ऐतिहासिक का पल है।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड के सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुरक्षित आवास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने महरमा प्रखंड के गजंडा पंचायत स्थित अमडीहा में एक नए नाला निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के सीपीडीआर बरवाडी महुआ मिलान रेलखंड पर तीसरी अप लाइन जोड़ने के लिए 23 से 27 जून तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं हटिया नई दिल्ली और टाटा जम्मू तवी जैसी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इस दौरान बरवाडी स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव बंद रहेगा। राज्य में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हवाओं के रुख में बदलाव के साथ ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार निशानेबाजों को सीधे राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
2: ये तृतीय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शूटिंग का ये होने जा रहा है। क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी बच्चों की संख्या में, इसीलिए 4 दिवसीय इसको किया गया है। इसमें 4 दिन में करीब करीब 400 बच्चे शामिल हैं।
0: झारखंड T20 क्रिकेट के लीग चरण का समापन हो गया है। जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबलों में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स ने शानदार जीत दर्ज की। पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने विराट सिंह के धमाकेदार 106 रनों की बदौलत 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रनों के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं दूसरे मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने एक तरफा खेल दिखाते हुए धनबाद डायमंड्स को 9 विकेट से शिकस्त दी और टूर्नामेंट में विजयी समापन किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी
1: है?
2: बिल्कुल अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लिखकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
2: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: ला ला ला।
1: मंजरी अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ।
2: बिल्कुल,
1: जहाँ पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
2: जी
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
5: पिछले भाग में आपने सुना
6: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ

0: सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
2: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
3: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
0: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसके पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
4: अम्मा ये देखता क्या हूं?
5: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
4: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
5: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
4: बहुत अच्छा होता।
6: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
4: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
6: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
4: अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
6: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्यु देव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
3: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
4: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया, सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
5: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
3: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
5: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
6: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज

0: education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो दीपा हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
3: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
2: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें कॉपी बैग बॉटल टिफिन जूते सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
3: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा है ना। लेकिन मिस उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
2: बिल्कुल दीपा बैठ जाती है और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है क्योंकि बच्चों के लिए और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं और अक्सर देखा होगा तुमने बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
3: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मी की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर, और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है पाठ्यक्रम है और फिर जो होमवर्क आ जाता है उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है, फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
2: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा, और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं, उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती, तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
3: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना, फिर बच्चों को डराने के बजाय हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्या है वो खुलकर बता सके। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे, फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का

0: एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था असल में, और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके पर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो हम
0: वही देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है, बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी है, लेकिन देखा जाए दीपा तो हम लोग के समय भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराए नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
1: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती
0: क्योंकि
1: है।
0: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश के फुहारे आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है, गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा न होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है
0: उसी में
1: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, और जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
1: और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
0: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए।

0: अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू।

0: होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनी की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी। ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भुरकना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला. तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी.
1: बिल्कुल. तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी. और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी. और बच्चे नहे अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के.
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से. सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा महेश्वरी का नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धनबाद नगर निगम परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपनगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद कर्मियों ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कम उम्र में विवाह होने पर लड़कियों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक दुष्परिणामों को बेहद सजीव तरीके से प्रदर्शित किया। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की फुलवरिया शाखा में आज दोपहर एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार रसकलाल पासवान पर ईंट पत्थर से अचानक हमला कर दिया। हमले में सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हंगामा बढ़ता देख जब स्थानीय लोगों ने आरोपी दिलीप यादव को रोकने का प्रयास किया तो उसने खुद को भी मारकर घायल कर लिया। सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने कपाली ओपी क्षेत्र के कबीर नगर स्थित केजीएन मेडिकल दुकान में रंगदारी न देने पर की गई फायरिंग और लूटपाट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को जमशेदपुर के आजाद नगर से दबोचा। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड की टीम का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में राज्य भर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ियों के लिए जुलाई में एक विशेष प्रशिक्षण

0: प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है। और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है।
1: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं। तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात, और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर। तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
2: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस होगी फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी।
2: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी

0: ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है
1: जी।
0: अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि दो मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे
1: जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: मेरा। ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की, फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में, पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए, उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई है, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं, स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है, मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो, अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग, हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी.

0: ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है.
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं. तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. अभी ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा.
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाया है अपने श्रोताओं को.
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ. थोड़ी बीट होनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है.
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटी, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजी।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर, पेश प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी एपिसोड 1311।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए

द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है लोकटक झील में द्वीप मिट्टी घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन साइबेरिया रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका आरोह अवरोह थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज्य स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे

0: था तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं

0: हो जाते। हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1311 आकाशवाणी का। ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और AI संचालित न्याय सेतु, चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटकी स्थित सिमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड की सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया। और हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली।

0: डुप्लीकेट। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।
1: तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा।
2: नहीं।
1: देखो मेरी आंखों में और बताओ क्या यह और मेरी उम्र 25 साल अधिक कर लूं?

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक मुसाफिर एक हसीना। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना दोस्त फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम को फिल्म एक लड़का एक लड़की में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सभी भाई बहन के मुकेश तन से जोहार प्रणाम और राम राम। साथ साथ सभी भाई बहन के अपनी खास कार्यक्रम खेती बारी में स्वागत हैं, जोहार हैं। और जैसा कि हम इन जाने ही कि हम इनके जो देश है वही कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकतर आबादी जो है गांव में ही रहा है और यही खातिर जे खेती बारी है या पशुपालन है हम इनके जे मुख्य बोला हम इनके देश के पैसा भी है, व्यवसाय भी है और देश के बहुत बड़ा ही एक रोजगार भी देवे है। और अभी के चूंकि समय है देखा कि मानसून अब आवे वाला ही है, बूंदाबांदी भी हो रही है, कभी धूप कभी बूंदाबांदी। और अपन जे खेत उत के तैयारी है हम इन एकर में लगल ही है। अभी के देखा समय है कि अपन मेड़ जे हम इन खेत में धान लगेबे वो खेत के मेड़ जो है हम मजबूत करे के चाहिए। और अगर खेत के मेड़ अगर मजबूत रहते और एक तरह के एक योजना बना के अगर हम इन रहे कि जैसा कि हम इनके एक नंबर खेत है, दो नंबर खेत है, तीन नंबर खेत है, तो किस तरह हम इन कौन सा बीज के हम इन धन रोपनी करवे ये भी हम इनके एक योजना बना के काम करके पड़ते हैं। क्या कि देखा एक चीज के ही अगर तीनों खेत में तू लगा दे है तो ओकर से कभी कभी हुआ है हम इनके दिक्कत का सामना भी करे है। तो अगर हम इनके अगर अलग अलग खेत है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और अलग अलग वैरायटी के हम इन बीज अगर हम इन धान हम इन लगाइए तो हम इनके ओकर में मुनाफा कर में हम इन होते। और एक बात है कि हम इनके खेती बाड़ी हो या कोई भी क्षेत्र हो जे महिला के जे योगदान है हम इनके पूरा देश के जे महिला के जे योगदान है ये सराहनीय है। और हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अगर हम इन खेती बाड़ी की ही बात करिए तो देखा कि भिनसरिये से हम इन देखे ये कि भिनसरिये उठ करके घर के काम तो करबे कर रहे थे, साथे साथ हम इनके साथ खेत में भी बढ़ चढ़ के हम इनके साथ है कर में देवा है। तो महिला के योगदान जो है हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो माटी से लेकर के अंतरिक्ष तक का बात बोला तो महिला के योगदान अमूल्य है और सराहनीय है। और बिना महिला के योगदान के हम इन एक तरह के कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि बिना ओकर जो सहायता के हम इन आगे बढ़ सकेंगे। तो हम इन खेती बाड़ी कर रही है और खेती बाड़ी में एक बात है कि कोई भी चीज अगर हम इन बढ़िया तरीका से कर रही है, सोच समझ के कर रही है तो हम इनके ओकर में मुनाफा होवे है। और आज के जो खेती है ये आधुनिक खेती है, समय समय पर बदलाव भी होते जा रहे, चाहे वो खाद के हो, चाहे बीज के हो, चाहे खेती बाड़ी के किस तरह हम इन काम करिए ओकर बारे में हो, चाहे सिंचाई के साधन हो, तो हर तरह से बदलाव होते जा रहे। पहले देखा कि अगर हम इन मान ले खेत अगर हम इन में कुछ लगेले ही है, कोई कीट व्याधि अगर आ गए तो हम इन बड़ा लंबा चौड़ा खेत में हम इन हाथ से ही अपन जे कीटनाशक छिड़काव कर रही है। लेकिन अब देखा ड्रोन दीदी जेकर हम इन बात कर रही है कि ड्रोन के मदद से ही एक देखा महिला के समूह रहा है अपन ड्रोन दीदी के जगह नाम से जानल जा है। और देखा वो जो है कम समय में ही हम इनके खेत में चाहे कुछ चीज के चाहे कीटनाशक के छिड़काव हो चाहे और तरह किसी तरह के छिड़काव हो हम इनके कम समय में ही हो जा है। तो अब देखा खेती बाड़ी एक उन्नत तरीका से हम इन कर रही है, आधुनिक विधि से कर रही है। और अब देखा खेती बाड़ी ये नहीं कि पूरा पहले हम इन जिस तरह परंपरागत तरीका से करा लिए कि जैसे तैसे खेती कर लिए और उतना उपज ना हुआ है, लेकिन जब से हाइब्रिड बीज यानी उन्नत किस्म के बीज आ गए हैं और हम इन खेती बाड़ी में अपन नया नया जो विधि के प्रयोग कर लिए तो एकर से हुआ है कि बदलाव हुआ है। अगर हम इन धान के कुछ समय बाद देखा हम धान के रोपाई भी रोपनी भी करवे तो एकरों में देखा कि श्री विधि भी बहुत कारगर साबित होले है। अगर मान लिया अगर वर्षा कहीं कम है तो श्री विधि तकनीक बहुत ज्यादा कर्म कामगार काम के सिद्ध कर ले है और अच्छा खासा उत्पादन भी कर्म दे ले है, पहले भी हमें देखते आइए। और जे खेत में पानी मान लिया कम जमा है या ना के बराबर रहा है तो कर्म श्री विधि के इस्तेमाल बहुत है। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा खेत में श्री विधि ही अपना लेवा, लेकिन प्रयोग करे के चाहिए किसान भाई बहन के, क्योंकि देखा श्री विधि में एक बात ये भी है कि बहुत तरह से हम इनके समय के भी बचत हुआ है, पानी के भी कर्म हम इनके बचत हुआ है। और देखा कार्यक्रम में तो हम इन बनल ही जानकारी भी ढेर सारा ले लिए कि किस तरह हम इन योजनाबद्ध तरीका से हम इन खेती बाड़ी करिए जैसे हम इनके मुनाफा होते हैं। लेकिन ओकर पहले सुनिए जरूरी संदेश, ओकर बात सुनबे हम इन बातचीत करबे योजनाबद्ध तरीके से खेती के बारे में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: और देखा हम इन जरूरी संदेश के साथ एको प्यारा सा भी गीत सुन ले लिए, और आशा कर रही है कि गीत किसान भाई बहन के अच्छा लगले होते है। और देखा बाहर भी देखा कि बूंदाबांदी के मौसम है, थोड़ा सा बारिश भी इधर होले है, तो मौसम पूरा खुशनुमा भी है। तो अब हम इन बढ़े ही आगे जानकारी की तरफ, और देखा कि हम इन बात कर रहे लिए योजनाबद्ध तरीके से खेती के बारे में। तो देखा कोई भी चीज़ अगर हम इन योजनाबद्ध तरीके से कर रही है तो हम इनके अकोर में सफलता मिले है, चाहे वो खेती बाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो। और जब हम इन खेती बाड़ी की बात कर ली तो एक के बाद कौन सा चीज हम इनके करे के चाहिए, तो ये चीज होवे के चाहिए। तो किसान भाई बहन अगर कुछ तरह के अगर खेती बाड़ी में बदलाव हुआ है, और अगर कुछ अगर हम इनके समझ में ना आए, तो बहुत तरह के देखा एक में प्रशिक्षण के भी चला है, जो कि 3 दिवसीय हुआ है, 5 दिवसीय हुआ है, और आवासीय भी हुआ है कि जहाँ रह करके भी किसान भाई बहन प्रशिक्षण ले हुआ है। तो काहे न अगर हम इन कुछ नया सीखे चाहिए, तो प्रशिक्षण अगर समय समय पर आस पास में हम इनके होते रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र या देखा कि कोई एनजीओ के माध्यम से, या कहीं रांची में भी हम इन जाइए तो वहाँ भी प्रशिक्षण हम इन ले ही है। तो प्रशिक्षण लेने से हम इन नया नया चीज के बारे में जाने ही है। तो प्रशिक्षण हम इन ले लिए, साथ ही साथ योजनाबद्ध के तरीके से खेती के बात हम इन जब कर लिए घर में, तो कौन सा खेत में हम इन का लगाइए, इस चीज के भी हम इन चुनाव कर लेवे के चाहिए। क्या देखा अलग अलग खेत के माटी भी अलग अलग है, रंग रूप भी अलग अलग है, सिंचाई के साधन भी अलग अलग है, तो कौन सा खेत में हम इन का लगाइए एक बारे में भी हम इनकी जानकारी हुए के चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज हुआ है माटी, और माटी के में हम इनके देखा ये कि सॉइल हेल्थ कार्ड यानी माटी के जांच हम इनके जो है ये जरूर से जरूर करावे के चाहिए। और जिस तरह हम इन कोई भी फसल अगर हम इन लगा ही है, पहले हम इन माटी के जाँच करा लेवे के चाहिए। एक बात और है कि कोई भी चीज हम इन लगाई है तो बदल बदल के भी लगाना चाहिए, यानी फसल चक्र के उपयोग भी हमें करते रहना चाहिए। और माटी के जांच हमें तो हमेशा कराना ही चाहिए, और माटी के जांच हमें जब करा ही है तो ऐसा प्रतिनिधित्व करे के चाहिए माटी के कि जे कि खेत के एक सही नमूना होवे के चाहिए, जे कि सही जानकारी हम इनके मिलते हैं। तो खेत के चारों कोना और बीच से अगर हम इन माटी ले ही है भी आकार के कम से कम 6 से 7 इंची गड्ढा करके, तो हम इनके एक सही नमूना ओकर में हो जाए। जब हम इन माटी जांच कराए के लिए ओकर में देवे, तो एक बात ओकर में लिखे के चाहिए कि माटी जांच कराए के पहले हम इन का चीज ओकर में लगेला लिए, और माटी जांच होवे के बाद हम इन का चीज लगेबे, तो इस चीज के हम इन जानकारी देवे के चाहिए, अपन खेत प्लॉट के जानकारी देवे के चाहिए, और नजदीकी जो भी प्रयोगशाला है माटी जांच के वहां देवे के चाहिए। तो एक रिपोर्ट हम इनके कुछ समय बाद, सप्ताह भर बाद या 10 दिन बाद हम इनके मिल जाए कि माटी में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कि बोरन की कमी है, कि पोटासियम की कमी है, कि नाइट्रोजन की कमी है, कि फॉस्फोरस की कमी है। तो जो भी चीज के हम इनके कमी हुआ है ओकरा विशेषज्ञ से संपर्क करके ओकर काज से दूर करे के चाहिए, एक बारे में पूछ के फिर अपन खेत के ऊंची डाल करके दूर करे के चाहिए। और साथ ही साथ गोबर खाद या केचुआ खाद के भी प्रयोग करे के चाहिए। मान लो अगर हम इनके पास 1 एकड़ के खेत है, ओकर में पुराना गोबर खाद या केचुआ खाद जो हुआ है अगर 1.5 से 2 साल भी पुराना मिल जाए, तो 3 से 4 ट्रैक्टर भी डाल दीजिए, और खेत के जोताई अगर हम इन कर दीजिए 3 से 4 बार, यानी कि पैर ओकर में अगर रखिए तो पैर के ओकर में छाप पड़ जाए, तो यानी हम इनके माटी एकदम तैयार हो गए है। ओकर बाद उन्नत किस्म के बीज के चुनाव भी हम इनके करे के चाहिए, क्योंकि देखा उन्नत किस्म के बीज के गुण ये भी हुआ है कि जे ओकर में जे फल लगते है ओकर में, तो बोला कि बड़ा साइज के लगते हैं, रंग रूप में बढ़िया होते हैं और बर्बाद बहुत कम होते हैं। तो ये हुआ है उन्नत किस्म के बीज, बीमारी भी ओकर में कम आवे है। तो ये हुआ है उन्नत किस्म के बीज के बात है घर में। और सिंचाई के साधन में हमें अपन तो देखा गर्मी के समय में हमें टपक सिंचाई बूंद के प्रयोग करबे कर लिया, देखा बरसात आ रहा तो पानी के अगर में कमी तो नहीं होते, लेकिन बरसात के अलावा भी 3 मौसम हमें के जो हुआ है और पानी के कमी अगर हुआ है, तो हमें कम समय में कम लागत में हमें सिंचाई विधि के प्रयोग भी कर सके, जो कि टपक सिंचाई बूंद विधि है। ओकर बाद बाजार के ज्ञान भी हमें होवे के चाहिए कि कौन सा बाजार में का रेट चल रहा है, तो एकर से भी हमें एक अच्छा तरह से जानकारी हमें के मिल जाए। साथ ही साथ जैसा कि हम बात कर लिए कि खेत के जो हो अभी समय है अपन खेत के जो है मेड़ के जो है पूरा मजबूत करे के चाहिए, ताकि मिट्टी के जो कटाव एकर में न हो और पानी ओकर में बढ़िया तरीका से जमे। तो इस खातिर खेत के अपन जो मेड़ है ओकर बढ़िया से मजबूत कर लिए, अगर पानी ओकर में ज्यादा हो जाए तो जल निकासी के भी जगह होवे के चाहिए, ढलाई जहाँ जगह है वहां पे, ताकि अगर पानी ज्यादा हो तो मेड़ के न तोड़े हल्का सा छेदा करके हमें पानी के निकाल दिए। तो ई हो जाए अपन खेत के जो मेड़ के है मजबूत करे के चाहिए, जेकर से माटी के जे कटाव नहीं होते आ पानी भी आराम से ओकर में रुकते। बहुत सा देखा कि मेड़ में जो हुआ है फलदार वृक्ष या इमारती वृक्ष या फल पौधा सब लगा के देवे है, जेकर से जड़ से वो माटी पकड़ दे रहा है, जेकर से माटी के कटाव नहीं हुआ है आ पानी के जमाव वहाँ बढ़िया हुए है। तो और भाई आगे भी हम इन देखा जानकारी बहुत सा ले लीए, अब समय हो गए है जानकारी के और हम इन आज जानकारी ले लीए गौ पालन और बकरी पालन स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनने का बढ़िया जरिया है। जानकारी दे रहे थीं हरीश कुमार पासवान, यानी अनखर से बातचीत कर ले यानी हम मुकेश कुमार, तो सुने जाए ये जानकारी।
1: श्रोताओं आज हमारी बातचीत हो रही है हरीश कुमार पासवान से जो कि डेयरी फार्म चलाते हैं। तो हरीश जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी हाँ नमस्कार।
1: हरीश जी आपका जो डेयरी फार्म है
2: जी,
1: कितना गाय आप पालते हैं?
2: मेरे पास अभी 15 गाय है टोटल।
1: 15 गाय है
2: जी और 15 बकरियां हैं
1: जी। यानी गाय पालन भी करते हैं और साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं जी। इसको हम लोग गरीबों का एटीएम बोलते हैं बकरी पालन को
2: जी।
1: एक बातचीत आता है गाय पालन में कि आवास उसका कैसा आप शेड कैसा बनाए हैं, क्योंकि अगर हमारा आवास बढ़िया रहेगा तो हमारा गाय पालन हो या बकरी पालन हो बढ़िया ढंग से होता है। तो हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं गाय पालन का और इसका आवास आप कैसा बनाए हैं।
2: गाय का जो शेड है वो मतलब काफी हवादार होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए कि ताकि हवा इधर उधर पर मतलब चला जाए, फ्रेश रहे कि ताकि गाय लोगों को कभी मतलब गर्मी ना लगे या दिक्कत ना हो
1: जी। हाँ।
2: और शेड जो है नीचे फर्श जो है वो ढला हुआ होना चाहिए, सबका नाद अपना अपना बना होना चाहिए खाने पीने के लिए। एक नाद है खाने के लिए, दूसरा नाद है पानी पीने के लिए।
1: यानी दो नाद है?
2: दो नाद एक गाय के लिए
1: जी। हाँ
2: बिल्कुल।
1: अच्छा विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि जैसे कि डेयरी फार्म में दो तरह का विधि होता है, एक हेड टू हेड विधि एक टेल टू टेल विधि। यानी कि हेड टू हेड विधि में बीच में नाद होता है और दोनों तरफ से गाय होता है, और टेल टू टेल विधि में एक ही तरफ नाद होता है। आपका किस तरह क्या बनाए हुए हैं?
2: मेरा टेल है,
1: टेल टू टेल है
2: जी। हाँ
1: जी हाँ। यानी एक तरफ अलग से नाद है, दूसरी तरफ अलग से
2: अलग से नाद है,
1: दोनों का पूछ एक तरफ रहता है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
1: जी हाँ। कि बहुत सा हम डेयरी फार्म में भी गए हुए हैं, बहुत सा जो गाय जो जब

0: पसंद करते हैं कौन सा नस्ल का?
1: कस्टमर अधिकतर साहिवाल का पसंद करते हैं, उसका दूध थोड़ा गाढ़ा और मोटा होता है।
0: गाढ़ा मोटा रहता है
1: जी हाँ। बाकी दूध देने में तो HF होल्स्टीन फ्रिजियन काफी अच्छी है, उसका दूध मतलब क्षमता ज्यादा है जी हाँ। साहिवाल के अपेक्षा
0: एक बात आता है कि यहाँ पे जितना तरह का आप नस्ल रख रहे हैं, क्योंकि लोकल ये तो बहुत कम मिलता होगा
1: जी,
0: बाहर से आप जाके लाते हैं?
1: सभी गाय बाहर से आती है।
0: बाहर से तो आप बाहर से जाके लाए हैं या फिर यहाँ पे कोई व्यापारी भी लाके बेचते हैं उससे लिए?
1: नहीं नहीं, व्यापारी ही मतलब लाके देते हैं हम लोग को
0: जी हाँ।
1: वो बिहार से यूपी से गाय ले आते हैं और हम लोग उनसे खरीदते हैं।
0: अच्छा, कोई नया अगर सोच रहा है कि हमको गाय पालन करना है
1: जी हाँ,
0: उसको उन्नत नस्ल का गाय रखना पड़ेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो गाय पालन लेने जाए जैसा कि जर्सी हो या कोई गाय, आप कैसा नस्ल का वो गाय ले और कैसा उसका रूपरेखा कैसा होना है?
1: अगर कोई नए तरीके से करना चाहता है या नया शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए मतलब कि साहिवाल
0: जी हाँ,
1: और एक लाल सिंधी गाय होती है
0: जी हाँ,
1: जो कि हमारे झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसमें मतलब किसी तरह कोई दिक्कत रख रखाव में बिल्कुल भी नहीं होता है और नए किसान को समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मतलब उनके लिए साहिवाल और रेड सिंधी मतलब लाल सिंधी ज्यादा उपयुक्त है।
0: बहुत से किसान या गौपालक ऐसा भी कहना है कि जो गाय का चमड़ी पतला होता है उसका दूध बढ़िया देता है, कैसा होता है जो बढ़िया दूध दे?
1: बिल्कुल सही कहना है उनका। समझ लीजिए जिस गाय का चमड़ा थोड़ा पतला होता है सॉफ्ट होता है वो दूध अधिक देती है, और समझ जिस गाय का माथा थोड़ा चौड़ा हो कान थोड़ा छोटा हो वो गाय मतलब अधिक दूध देती है
0: जी हाँ। अच्छा, ये बढ़िया से दूध दे इसके लिए बहुत होता है कि इसका आहार
1: जी
0: बढ़िया आप खाना देंगे तो बढ़िया वो दूध देगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका आहार में क्या कितना टाइम देते हैं इनको खाना?
1: खाना हम तो दो टाइम देते हैं
0: जी हाँ। खाना में क्या क्या देते हैं इनको?
1: खाना में कुट्टी हो गया, हरा चारा हो गया, चोकर हो गया, दाना हो गया और सुधा दाना आता है।
0: और कितना दूध आपका कितना हो जाता है इसमें?
1: हमारा दूध अभी लगभग 1.5 से 2 क्विंटल होता है पर डे का उत्पादन है।
0: अच्छा, एक बात यहाँ हम जानना ये भी चाहेंगे कि जब गाय गाभिन होती है
1: जी हाँ,
0: तो उस समय आप क्या विशेष सावधानी उसमें बरतते हैं?
1: जब गाय गाभिन हो जाती है तो उसको मतलब विशेष रूप से तो खाने पर ही ध्यान दिया जाता है कि ताकि खाने में से कोई कमी ना हो, प्रोटीन उसको पूरी मात्रा में मिल सके कि ताकि उसमें मतलब प्रोटीन का अधिक जरूरत होता है उसको। जनवनी जो है जो मतलब बच्चा जो गाभिन रखती है गाय गाभिन हो जाती है वो 7 महीने तक दूध देती है
0: जी,
1: 2 महीने ही रेस्ट करती है
0: जी,
1: तो 2 महीनों में उसको विशेष रूप से खाने पर ध्यान दिया जाता है, पौष्टिक आहार चोकर कुट्टी हरा चारा दाना ये सब मतलब विशेष रूप से दिया जाता है।
0: अच्छा, जो उन्नत नस्ल का गाय होता है
1: जी हाँ,
0: उसका रख रखाव भी विशेष सावधानी बरतना पड़ता है, जैसे जर्सी हो गया, गर्मी में पंखा चाहिए
1: जी हाँ,
0: ठंडा में हीटर चाहिए, आपका जितना तरह का नस्ल है उसको क्या सावधानी बरतते हैं अलग अलग मौसम में?
1: ठंडा में समझ लिया हम बिल्कुल उनके लिए हीटर का यूज करते हैं, आग भी जलाते हैं रात में और चारों तरफ से पूरा पैक करते हैं ताकि ठंडा हवा ना घुस सके, और गर्मी में सबके लिए पंखा लगा हुआ है पूरा मतलब मेल सेट है पूरा ओपन खुला हुआ है ताकि गर्मी बिल्कुल एहसास हो लोगों को ना
0: जी हाँ। अच्छा, साफ सफाई का क्या महत्व है गौ पालन में?
1: गौ पालन में विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, अगर साफ सफाई होगा तो गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगी और किसी तरह का मतलब कोई कीटाणु वगैरह वहाँ पर पनप नहीं सकेगा, जिससे गाय हमेशा ठीक रहेगी तंदुरुस्त रहेगी।
0: यानी साफ सफाई का पूरा
1: विशेष
0: बीमारी भी आपका काम आता है?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा, इतने तरह का आपके पास गाय है
1: जी हाँ,
0: कुछ खास बीमारी भी आप इसमें देखते हैं या टीकाकरण समय से पहले करवाते हैं?
1: हाँ, टीकाकरण होता है, समझ लीजिए कि बरसात से पहले टीकाकरण होता है
0: जी हाँ। टीकाकरण करवाने से किसानों को या गौ पालकों को क्या फायदा होता है?
1: टीकाकरण करवाने से ये फायदा होता है गाय मतलब आपकी बिल्कुल सेफ है, बीमारी से दूर है और किसी तरह मतलब कोई उसको दिक्कत नहीं होगा
0: जी हाँ। अच्छा, कुछ खास आप इसमें बीमारी भी देखते हैं क्या?
1: नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब लगभग 15 साल से चला रहे हैं डेयरी फार्म
0: हाँ।
1: तो अभी तो मतलब हमारे किसी तरह कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली सर्दी बुखार होता है तो बिल्कुल कोई दिक्कत उससे।
0: अच्छा, इसमें एक गाय को खरीदने में जो कि बढ़िया दूध दे कितना
1: हाँ।
0: खर्च आ जाता है?
1: समझ ली कि 20 लीटर दूध देने वाली गाय का कीमत लगभग यहाँ पर तो हम लोग को लगभग 70,000 पड़ जाता है, जो कि थोड़ा महंगा है लेकिन क्या किया जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास।
0: बहुत से हम जगह देखते हैं गाँव में कि किसान लोग समूह एक बना लेते हैं, वो जहाँ पे गाय मिलता है एक ही समूह में गए अपना 20 लोग किसान मिल करके गाय अपना ले लिए, ट्रक बुक करके उसमें डाल दिए लेते आए। इसी तरह चारा भी वो लोग करते हैं कि समूह बनाकर चारा भी ले लिए ताकि उनको लागत कम आए।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: लागत जब आपको कम आता है तो आपका मुनाफा बढ़ता है
1: एकदम।
0: तो आप किस तरह क्या करते हैं?
1: हम तो समझ लिए कि अपना जो भी माल खरीदते हैं बिल्कुल होलसेल में खरीदते हैं ताकि मेरा मतलब रेट बिल्कुल चीप रहे, अधिक महंगा हमको ना पड़े। जैसे कि कुट्टी है तो हम पूरा ट्रक गिराते हैं, दाना है तो पूरा होलसेल से उड़ाते हैं ताकि रेट कम पड़े
0: जी हाँ।

0: लगभग कितना दूध हो जाता होगा सुबह शाम मिला के?
1: हमारे पास मतलब 1.5 से 2 क्विंटल दूध होता है पर डे का उत्पादन।
0: तो ये गाँव ही के लोग ले लेते हैं या आपको कहीं होटल में या कहीं और देते हैं?
1: नहीं, होटल में तो हम देते नहीं है, मतलब मेरा काउंटर सेलिंग है।
0: जी हाँ।
1: प्लस जो दूध बच जाता है उसको हम मेधा डायरी में सप्लाई करते हैं।
0: मेधा डायरी में सप्लाई करते हैं जो बच जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत से लोग जैसे दूध का बना हुआ उत्पाद को भी बेचते हैं, जैसे पनीर हो गया।
1: जी हाँ।
0: ये सब चीज हो गया, तो आप कैसा है?
1: हम पनीर भी बेचते हैं, घी भी बेचते हैं और दूध भी बेचते हैं, तीनों चीज बेचते हैं।
0: जी हाँ,
1: हमारे पास तीनों चीज उपलब्ध।
0: साथ में आप किए हुए हैं बकरी पालन आपके,
1: तो गौ पालन और बकरी पालन दोनों ही मतलब बहुत अच्छा है। गौ पालन से ज्यादा बेनिफिट बकरी पालन में है।
0: जी हाँ।
1: और बकरी मतलब कि हमेशा ठीक रहती है, बीमार वगैरह कम पड़ती है, नुकसान उसमें कम होता है।
0: कितना बकरी होगा आपके पास?
1: अभी मेरे पास टोटल 15 बकरी है।
0: 15 बकरी है।
1: जी हाँ।
0: सब ये देसी ही है या इसमें भी कुछ नस्ल का भी है?
1: नहीं, सब इसमें मतलब देसी और ब्लैक बंगाल है,
0: ब्लैक
1: जो हमारे झारखंड के लिए बहुत अच्छा है।
0: चूंकि आपके पास जगह भी बहुत है, सब बकरियाँ चर भी रही है, गाय भी आपके कुछ खुले हुए गाय है वो चर भी रहे हैं।
1: जी।
0: तो आप हमारे युवा जो श्रोता है जिनके पास समय भी है,
1: बिल्कुल
0: जगह भी है, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं ना गौ पालन करना, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं भाई के रूप में?
1: उनको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि मतलब वो शुरुआत करें अपना घर से ही बिल्कुल, और देसी से शुरू करें कि ताकि वो समझ सके और समझते हुए आगे बढ़े।
0: जी।
1: देसी बकरी रखें, देसी गाय रखें, उसके बाद उनका नस्ल मतलब सुधार करें और नस्ल मतलब उसमें बढ़िया नस्ल रखें। इससे क्या होगा उनको मतलब कि नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा।
0: जी हाँ। आपने इतना बढ़िया जानकारी आप हमारे श्रोता भाई बहन को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: तो देखा, अभी हम इन जानकारी सुन लिए गौ पालन और बकरी पालन स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनने का बढ़िया जरिया के बारे में। और देखा जानकारी दे रहे थे हरीश कुमार पासवान, जो कि बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं गौ पालन और बकरी पालन के विषय में, और इनकर से बातचीत कर रहे यानी हम मुकेश कुमार। और देखा अब हम इनके पास इतना समय जरूर है कि एक प्यारा सा गीत हम इन जाते जाते सुन सकेंगे। तो आवा हम इन सुनेंगे प्यारा सा गीत।

और देखा यही गीत के साथ अब हम इनके कार्यक्रम खेती बारी से जाए के बेरा भी हो गए, यानी कि हमरा मुकेश के अनुमति दा जोहार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारे शुरू की घड़ी में 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को अगली तिथि तक स्पष्ट निर्देश और आवश्यक जानकारी के साथ अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने धनबाद स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक मोड़ मुख्य शाखा में हुए करीब 1.25 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में 2 दशक से फरार चल रहे 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने देशव्यापी अभियान चलाकर आरोपी ब्रजभूषण प्रसाद को महाराष्ट्र के अहमदनगर और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दबोचा है। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इसमें अवैध खनन और खनिज परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा और मंडल कारा सुरक्षा को मजबूत करने की भी विस्तृत समीक्षा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही तमाम बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपनी दिनचर्या के कामों से थोड़ा सा वक्त निकालकर बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रही होंगी। तो चलिए आपके इंतजार को देते हैं पूर्ण विराम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: इस प्यारे से गीत के बाद बहनों चलिए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। बहनों जैसा कि आप सभी जानते हैं मौसम में काफी बदलाव आया है, कभी भीषण गर्मी तो कभी रिमझिम बारिश। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। बहनों जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी भी काम को कर पाने में सक्षम होंगे। आज भी हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कई सख्त कानूनी प्रावधान बनाए हैं। इनमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार व छेड़छाड़ के खिलाफ कठोर प्रावधान शामिल हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बताया जाता है कि यह कानून महिलाओं को घर में होने वाले शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण से बचाता है। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा आदेश और आर्थिक राहत पाने का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 हमें यह बताता है कि यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखने के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना दोनों गैर कानूनी माना गया है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 49(8)(a) के तहत कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, इस अधिनियम में 2012 के निर्भया मामले के बाद बने इस कानून ने बलात्कार और यौन हमलों के खिलाफ सजा को बेहद सख्त कर दिया है। इसके अंतर्गत तेजाब फेंकना और पीछा करना जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं। अनिवार्य सहायता सेवाएं, आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परामर्श व सहायता के लिए 181 महिला हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बहनों इससे जुड़ी बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: Thank you. बेटा है।
5: अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
6: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
4: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
6: अरे यार
4: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
7: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है। बच्चों की देख रेख, सही समय पर उसकी शिक्षा का ध्यान भी परिवार में ही रखा जाता है। परिवार बच्चों के सीखने की सबसे अच्छी पाठशाला है और माता पिता से अच्छे गुरु बच्चों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। बहनों, आइए सुनते हैं एक वार्ता, बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। वार्ताकार है अंजू कुमारी।

0: बच्चे के विकास में परिवार की भूमिका। किसी बच्चे का बाल्यकाल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है। यह बाल्यावस्था होता है जब वह तेजी से सीखता है, उसकी ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है और वह वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीखता है। बच्चों का समाजीकरण और उसका सामाजिक विकास साथ साथ होते रहता है, जो उसके अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरी ओर परिवार बच्चों के लिए आरंभिक पाठशाला मानी गई है। कहा जाता है कि विचार और भाषा का नींव इसी समय रखा जाता है, अतः बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका बहुत ही अहम है। फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण है कि विकास की इस अवस्था में परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था से पूर्व शैशव अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके दौरान उसमें अधिक पोषण, सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। यहाँ बच्चों के लिए माँ का स्नेह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह उनके भावनात्मक सुरक्षा विकास को प्रदान करता है। परिवार के लिए अन्य सदस्यों का स्नेह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह उनके क्रियात्मक विकास की एक नींव डालती है, जिसमें उसे अन्य चीज का सीखना उचित पूर्ण रूप से हो पाता है। इसके बाद आने वाली अवस्था जो होती है वह बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में पहुंचने से बच्चा का सामाजिक दायरा बढ़ जाता है और उनके समाज के प्रति उनकी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इस अवधि में उनकी भाषा का विकास अधिक तेजी से होते रहता है। इससे वह दूसरे लोगों से संवाद करना स्पष्ट करता है। ज्ञान इंद्रियां उनकी बहुत ही तीव्र गति से काम करने लगती हैं। परस्पर बातचीत करना, संपर्क करना, वातावरण से अधिक जानकारी प्राप्त करना उनका लालसा हो जाता है। जब बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तो वातावरण उनके लिए अपरिचित नहीं होता है। वह मिलना जुलना सबसे बहुत अच्छा लगता है। यह अनुभव सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ साथ उनको बहुत अच्छा अनुभूति देता है। इस उम्र में परिवार के सदस्यों के साथ साथ आसपास के लोगों का भी प्रेम भाव बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी बात पर कहना कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कैसा बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। पता है कि अनुशासन बच्चों के लिए अनियंत्रण एक मार्ग है, यह परिवार के बीच संभव है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा जाता है कि बाल्यावस्था अथवा 6 से 12 वर्ष की अवस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से मध्य होती है। इस दौरान बौद्धिक विकास धीमी लेकिन निरंतर होती रहती है। इस उम्र में वह बच्चा सोचना, तार्किक ढंग से किसी निर्णय पर पहुंचना आरंभ कर देता है। वह परिवार में जिस प्रकार का आचरण व्यवहार देखता है वह उसी प्रकार का सीखता है। चूंकि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार अलग अलग होता है, बच्चे अलग अलग चीज सीखते हैं। सभी सदस्यों का ज्ञान, बौद्धिक विकास स्तर सब अलग अलग होता है। इससे वह सभी कुछ कुछ न कुछ ग्रहण करते रहता है, उसे ज्ञान अर्जित करते रहता है। परिवार के परस्पर बातचीत करना, संपर्क करना, वातावरण से अधिक जानकारी प्राप्त करना उनका लालसा हो जाता है। जब बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तो वातावरण उनके लिए अपरिचित नहीं होता है। वह मिलना जुलना सबसे बहुत अच्छा लगता है। यह अनुभव सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ साथ उनको बहुत अच्छा अनुभूति देता है। इस उम्र में परिवार के सदस्यों के साथ साथ आसपास के लोगों का भी प्रेम भाव बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी बात पर कहना कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कैसा बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। पता है कि अनुशासन बच्चों के लिए अनियंत्रण एक मार्ग है, यह परिवार के बीच संभव है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा जाता है कि बाल्यावस्था अथवा 6 से 12 वर्ष की अवस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से मध्य होती है। इस दौरान बौद्धिक विकास धीमी लेकिन निरंतर होती रहती है। इस उम्र में वह बच्चा सोचना, तार्किक ढंग से किसी निर्णय पर पहुंचना आरंभ कर देता है। वह परिवार में जिस प्रकार का आचरण व्यवहार देखता है वह उसी प्रकार का सीखता है। चूंकि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार अलग अलग होता है, बच्चे अलग अलग चीज सीखते हैं। सभी सदस्यों का ज्ञान, बौद्धिक विकास स्तर सब अलग अलग होता है। इससे वह सभी कुछ कुछ न कुछ ग्रहण करते रहता है, उसे ज्ञान अर्जित करते रहता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों से प्राप्त की हुई ज्ञान को वह अपने सहपाठियों के साथ व्यक्त करता है। दूसरी ओर परिवार के सदस्यों के बीच का लाड, प्यार, अपनापन, सुरक्षा, भावनात्मक सामाजिक विकास की दिशा तय करती है। जिस बच्चे को यह प्यार और अपनापन नहीं मिल पाता है वह बच्चा अलग अलग चीज सीखते हैं। सभी सदस्यों का ज्ञान, बौद्धिक विकास स्तर सब अलग अलग होता है। इससे वह सभी कुछ कुछ न कुछ ग्रहण करते रहता है, उसे ज्ञान अर्जित करते रहता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों से प्राप्त की हुई ज्ञान को वह अपने सहपाठियों के साथ व्यक्त करता है। दूसरे ओर परिवार के सदस्यों के बीच का लाड, प्यार, अपनापन, सुरक्षा, भावनात्मक सांवेगिक विकास की दिशा तय करती है। जिस बच्चे को यह प्यार और अपनापन नहीं मिल पाता है, वह बच्चा सांवेगिक विकास से सही ढंग से वह विकसित नहीं हो पाता है। वह चिड़चिड़ा एवं एकाकी हो जाता है। यह उसके भावी जीवन के लिए हानिकारक होता है। सांवेगिक असंतुलन इस स्थिति के कारण वातावरण में अविश्वास की भावना को व्यक्त करता है। यह स्थिति उसके शैक्षिक विकास को भी बहुत बड़ी बाधा पहुंचाता है। किशोरावस्था में पहुंचने से बच्चों की सोचने समझने की जिज्ञासा जो होती है बहुत ही तेजी से विकसित होती रहती है। उसमें बच्चा बहुत अधिक क्रोधित होते रहता है। किसी भी बात पर वह बहुत अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। भावनात्मक रूप से वह स्वयं को असुरक्षित समझता है। यदि उन्हें इस उम्र में सुरक्षा की भावना ना दी जाए तो वह इस आयु वर्ग में पहुंचने से जिज्ञासा, कुतूहल, आत्मविश्वास की भावना प्रबल हो उठती है। वह अधिक क्रोधित किसी भी बात को लेकर वह असामान्य रूप से अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है। वह भावनात्मक रूप से स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है। यदि उन्हें इस समय सुरक्षा की भावना ना दी जाए तो वह उदंड और असामाजिक हो जाता है। अतः ऐसे परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के सदस्य ही उन्हें प्यार, विश्वास और समर्थ दे जिससे उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए और वह स्वयं को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर माने। परिवार में माता पिता और अन्य सदस्यों को भी उनके साथ मित्रता की भावना रखनी चाहिए। भारत में आदिकाल से ही संयुक्त परिवार की परंपरा चली है जहां बच्चों का उनके सभी सगे संबंधियों का साथ मिलता है जो उसके व्यवहार को लचीला और व्यवहारिक कुशलता बनाता है। यह उनके भावी जीवन शिक्षा के क्षेत्र में सफल सिद्ध होते हैं। परिवार की जिस समुदाय विशेष से संबंध रखता है उसके साथ विशेष व्यवहार, विश्वास और परंपराएं होती हैं। जो भारत जैसे देश में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बच्चों के परिवार के बीच होना चाहिए। न केवल उसके समुदाय बल्कि संबंधी परिवार की पहचान होती है जिससे बच्चों में आत्म गौरव की भावना आती है। दुर्भाग्यवश आज अधिकांश परिवार टूटते हैं। यहाँ यह प्रवृत्ति बढ़ गई है। एक परिवार में माता पिता के साथ तो बच्चों को मिलता है लेकिन परिवार के सभी सदस्यों से वह दूर हो जाते हैं जो उनके सामाजिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से एक बाधा सिद्ध करती है। वैसे ही बच्चे जिन परिवार में रहने का सुख नहीं मिल पाता है उनमें शारीरिक वृद्धि और बौद्धिक विकास का स्तर सामान्य रूप से तुलनात्मक में कम हो जाती है, असामान्य हो जाती है। सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध ज्ञान, अनुभव, विश्वास और धारणाओं पर परंपरागत की सीढ़ी चलती रहे। यह कार्य बच्चे में परिवार में रहकर ही हो सकती है। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है कि बच्चे के जीवन में परिवार की भूमिका अहम होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में जिस प्रकार बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशव अवस्था, ये सारे अवस्था जो होती है महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका अहम है, हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से और अधिक अच्छे तरह से होता है। जैसे कि हर एक परिवार के जो लोग रहते हैं उनका सोचने समझने और उनका तार्किक शक्ति अलग अलग होता है। वह बच्चे उस चीज को सीखते हैं और वह अपने ऊपर वह अप्लाई करते हैं। तो इसका कहना है कि वह बच्चे संयुक्त परिवार में अधिक अच्छे से रह पाएंगे।
1: बहनों, अभी आपने सुना वार्ता बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। वार्ताकार थी अंजू सिंह। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि बच्चों के विकास में परिवार अहम भूमिका निभाता है। बच्चों की प्रथम पाठशाला ही परिवार है। बच्चे जो भी सीखते हैं वो पहले अपने परिवार से सीखते हैं। उनमें अच्छे बुरे गुण, संस्कार, ये सभी उनके परिवार से ही आते हैं। और बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए बच्चों के लिए संयुक्त परिवार का होना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसी जानकारी के साथ बहनों, चलिए कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो गया है। तो आइए आपको चलते चलते सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आप आए बहार आई, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: अफलातून, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत हरिहरन और चित्रा की आवाज में।

आपको पहले भी कहीं देखा है। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अलीशा चेन्नई की आवाज में। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी का। ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देशभर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जनसेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गुड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अमनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। शत प्रतिशत अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न। 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और एआई संचालित न्याय सेतु चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिया।
1: एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब की चिंता करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वांगीण विकास पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया है उन्हीं सब को लेके हम लोग आम नागरिकों तक जा रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं रामगढ़ आया हूँ। यहाँ पे मेरी स्थानीय लोगों से भी मुलाकात हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। सांसद की पहल पर शुरू की गई इस 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सेवा का लाभ देवघर, मधुपुर, जरमुंडी, पौड़ियाहाट, गोड्डा और महगामा के लोगों को मिलेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-112-500 जारी किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटके स्थित सेमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीद विलियम प्रदीप तिर्की, प्रभु सहाय तिर्की, महावीर महली और एनएसजी कमांडो अजय भगत के परिजनों तथा वीर माताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों का यह गांव हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने तकनीकी खामी पर जेएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक

0: रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया। पोर्टल में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी उत्तर कुंजी नहीं देख सके थे। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। राज्य में संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत आज धनबाद नगर निगम में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप नगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप नगर आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।
1: द्वारा शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है, अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा।
0: राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थायी कर्मचारियों को एक महीने का अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया है। इस राशि को दो महीने के भीतर बिना ब्याज के लौटाना होगा। तय समय पर भुगतान न करने पर इसे 12 महीनों में सामान्य ब्याज के साथ किश्तों में चुकाना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। अवनी ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस अभूतपूर्व सफलता से न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे रांची शहर और झारखंड का नाम देश भर में रोशन हुआ है। जमशेदपुर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। रांची के आईजी मनोज कौशिक ने इसकी पुष्टि की है।
2: उसमें वो महत्वपूर्ण कांड था, तो महानिदेशक सब पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफर किए हैं और कांड अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें प्रगत लिंकेजेस है उसमें वर्क किया है।
0: सीबीआई ने धनबाद एसबीआई शाखा के 25 करोड़ रुपए के घोटाले में 20 साल से फरार दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत आरोपी ब्रजभूषण प्रसाद को महाराष्ट्र और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ से दबोचा गया। वर्ष 2005 में इस मामले में दोनों आरोपी पहचान बदलकर छिपे थे। धनबाद पुलिस ने निरसा क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि आरोपियों के निशानदेही पर चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन आरोपियों का धनबाद और पश्चिम बंगाल में पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
3: पूछताछ करने पर ये लोग चोरी हुआ मोटरसाइकिल को बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन लोगों के पास 5 गाड़ी रिकवरी मिला था और इन लोगों को निशानदेही पर 8 और गाड़ी हमको मिला था और वो भी रिकवरी हुआ है। और जिस साधन यूज करके वो मोटरसाइकिल का चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल का जो लॉक खोल देते हैं, वो भी साधन हमको बरामद हो गया है।
0: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाली 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित

0: ट्रायल में राज्यभर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने बताया कि जुलाई में विशेष शिविर के बाद अंतिम 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की जाएगी।
1: जुलाई 28 से लेकर 8 अगस्त तक तमिलनाडु में जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता है हॉकी इंडिया के द्वारा, जिसके लिए आज झारखंड टीम का ट्रायल हो रहा है, जिसमें विभिन्न जिला से कई खिलाड़ी आए हैं। इनका भी हम लोग ट्रायल लेंगे और इनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनको 30 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेंगे। 30 खिलाड़ियों का 15-20 दिन का कैंप कराएंगे और उसमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देश भर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जन सेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गोड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अवनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। 100% अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न। 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। समय कम बचा है, इसलिए देवघर में वरीय अधिकारियों का लगातार भ्रमण जारी है। पर्यटन विभाग के निदेशक नमन प्रियस तकड़ा ने बताया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हर व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह देवघर बासुकीनाथ आने में परेशानी न हो।
2: जो हम लोगों ने पिछले बैठकों ने ये एक्सपीरियंस किया था, इसको एड्रेस किया जा सके, उनको काफी हद तक एड्रेस किया गया है। कुछ आवंटन वगैरह की जो बातें हैं वो डिस्कस की गई, क्या हम लोग नया और वेंडर कर सकते हैं ताकि हमारे जो श्रद्धालु वो आए और उनको बेहतर जलापन का वो लाभ मिल सके सुरक्षित एवं बिल्कुल सरल वक्त। और हम लोग आशा करते हैं कि पूर्व के वर्ष में जिस तरह से अच्छा हुआ है और भी बेहतर हो, 2026 साल शराबी का वाटर मेला ड्रेनेज को हम लोग और बेहतर बनाएंगे। टेंट सिटीज में हम लोग अलग से हेड काउंसिलिंग करेंगे ताकि वहां पे जो भी हम लोग डेली बेसिस पे सुविधा दे सके उसको हम लोग बेटर मैनेज कर सके।
1: इधर देवघर नगर निगम को नई प्रशासक सुलेचना मीना मिल गई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पेयजल, साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था है। सावनी मेला को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो।
3: नगर निगम का प्राथमिकता उसकी यही रहेगी नगर निगम की, कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। और इसमें हम

0: और क्रैकर्स यूज करी हूँ। जितनी भी ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पे सफाई करनी यदि नहीं पहुँचते हैं, और तो ऐसी समस्याओं को टैकल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ट्रैक किया जाएगा, उनके ट्रैकर सिस्टम होंगे। एक कुनासी वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में हमने सुना है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है देवघर के लोगों के लिए, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है।
1: नशा मुक्ति को लेकर देवघर में जिला प्रशासन सख्त है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमानिया और पुलिस अधीक्षक परवीन पुष्कर खुद कमान संभाले हुए हैं। दोनों अधिकारियों ने कहा कि इस बार देवघर को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना पर काम किए जा रहे हैं, ताकि देवघर एक नशा मुक्त जिला बनकर उभरे।
2: नार्कोटिक्स का अगर हमें सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं, अरेस्टिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलें, और एक ये जो जागरूकता अभियान 15 दिनों का है उसमें सभी लोग भाग लें, और ये जागरूकता अभियान सभी लेवल्स पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर लेवल पे चलेगा। जागरूकता के साथ साथ साथ में कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी, और इन 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ड्रग पेडलर, जितने भी ड्रग पेडलर्स ये काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
3: जैसे नशा मुक्ति को लेकर जो जागरूकता है 26 जून को जो इसके लिए अभियान का जो एक दिवस है, उससे पहले 2 सप्ताह का एक अभियान चल रहा है सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल में और अन्य सार्वजनिक जगहों में, जहां पे सभी बच्चे और सभी युवाओं को ये संदेश दिया जाएगा कि नशा मुक्त होने से देश के विकास में और खुद के जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।
1: प्रदेश की एकमात्र एम्स अस्पताल में लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लड बैंक खुल जाने से आम लोगों को अब जीवन दान के रूप में ब्लड बैंक से ब्लड की आवश्यकता पूरी होगी। आशीष कुमार अकम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
4: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना ऐतराज फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अभिजीत और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है बादशाह।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

अनजाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में। फिल्म का नाम है अलबेला।

अली बाबा और 40 चोर। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना अरबन फिल्म का गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बलवान फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और अरुण बख्शी की।

पैसा लग रे मिला तो सही, गले से लगा तो सही। असा दिल तेरे कदम रखिया, असा दिल तेरे कदम

0: चार चोर चंदा चौकरी चांद चुराने आए, चमचा चलम चकोर चरैया चूचू चू चल रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा। टकला टकलू टाक टहोरी टकिया टपकी जाए, टम्बक डम्बू टम टम टेम्पो टक टक टक टक खाए, टक टक टक कर खाए भैया टक टक टक कर खाए। बबली बबलू बांगर बनिया बिन बरखा पल खाए, पिछली बादल बदली बहके बुलबुल बिरहा गाए, बुए बुए बिरहा गाए, खोखा खोखा पाए जी खोखा खोखा। संगीत सपेरा सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा सन समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा। पासी फंदा फुकी पाके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से फिर जाए।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आपके इंतजार को देते हुए पूर्ण विराम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना अभिजीत और साथियों की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था खरसावां झारखंड से आप हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और परिवार के सभी लोग। इसी गीत को सुनना चाहा था रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, निखत परवीन, नसीम अहमद, कोहिनूर बानो, खलील अहमद, आरजू बानो, नूर इस्लाम और हसीना खातून। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

बड़े दिल वाला, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा था अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। जामोडोबा धनबाद झारखंड से इसी गीत को सुनना चाहा था बेगम फरीदा रफीक। हजारीबाग पतरातू से बेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मितु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा एवं समस्त परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत रॉय, अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से सुभाष चंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया सोएब खान, मुस्तुबा खान, राउब और शाहिद। गांधीबाग अकोला से इसी गीत को सुनना चाहा था रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

आई मिलन की बेला, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा था दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा था पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार, अर्जुन कुमार, दीपक वर्मा, शफीउल्लाह अंसारी, सुनील वर्मा और सोनम। नई बस्ती सारिमपुर बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा बेगम और सभी अंसारी परिवार। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। रसूलीगंज से मोहम्मद गुलाम अली, मोहम्मद सद्दाम अली, पप्पू, छोटू और रोबोट।

ऑल इज वेल। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था ग्राम पोचरा सामुदायिक भवन से महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, पिंटू कुमार और कुमारी वर्षा। बेरडी से है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर और तनु करमकर। मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं ढेर सारे साथीगण।

बलवा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था चंदा चौक अंधरा ठाड़ी जिला मधुबनी बिहार से शुभिकांत झा, मुखिया जी हेमलता, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी, अर्चना, विवेक और मास्टर एस के सज्जन। इसी गीत को सुनना चाहता एकता।

कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबेद बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, बैंडी शर्मा, शोक शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीज फातिमा, यास्मीन फातिमा और शहनाज फातिमा, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से हैं महबूब आलम, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद बेगम, महफूज आलम, शमशाद बेगम, मालीटोला खिरगांव से हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, ऋषि और राहुल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। उप सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल

0: श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
3: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक

0: खलनायक की या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
1: मस्ताना अल्लेना, सिर्फ एक तू है।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं यह तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी। मस्ताना अल्लेना।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

किस्मत। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में। फिल्म का नाम है अमृत।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

आती सुबह दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

बंदिश फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आम्रपाली।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से।

श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज की फिल्म है चाहत। चाहत 1996 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं पूजा भट्ट, शाहरुख खान, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक ने और गीत है निदा फाजली के। इस फिल्म के निर्देशक हैं महेश भट्ट और निर्माता है रॉबिन भट्ट और विरल लखिया। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के कुछ गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो

0: की है
1: और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken,
4: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
2: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this.